सुहासिनी सुमधुर भाषा।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की नवी तिथि, तदनुसार 31 जुलाई 2026। प्रातःकाल के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:00 को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है हिंदी में समाचार
1: के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और

0: केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों की कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों के नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाने विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातःकाल के 6:05 हो रहे हैं। समय है आज के विचार का। विषय है पहचान का संकट। आलेख और वाचक स्वर है श्री प्रमोद कुमार शर्मा का।
2: आधुनिक मनुष्य कई प्रकार के संकटों से गुजर रहा है। कुछ तो उसमें स्वाभाविक है और कुछ कृत्रिम।

0: मनुष्य ने अपने लिए कृत्रिम संकटों का जाल सा खड़ा कर लिया है। इन्हीं में से एक है पहचान का संकट। आज हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा का भयंकर तूफान उठा हुआ है। चाहे व्यवसाय हो या नौकरी, खेती बाड़ी हो या ठेकेदारी, हर क्षेत्र में व्यक्ति अपने प्रतिस्पर्धी से आगे निकल जाना चाहता है। इसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और इसमें अपने 10-12 घंटे भी खर्च कर देता है। ये सारा वक्त उसका खून निचोड़ लेता है और उसे एक मानसिक दबाव में डाल देता है। शारीरिक ऊर्जा का क्षरण होने से उसका शरीर इस प्रकार के दबाव सहन नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वो अवसाद और बीपी जैसी बीमारियों से घिर जाता है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह की प्रतिस्पर्धा में रखा क्या है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य से बंधा हुआ है। जितना उसके भाग्य में है उससे अधिक वो प्राप्त नहीं कर सकता। भाग्य केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक कारण होते हैं। भाग्य इन्हीं के बीच में से रास्ता निकालकर मनुष्य को उच्चतम शिखरों पर ले जाता है। परंतु प्रतिस्पर्धा की दौड़ में उनका इन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता और वह यंत्रवत सिर्फ अपने काम में डूब जाता है। अब कहने को तो फिल्म उद्योग में हर कोई 10-12-14 घंटे काम करता है, परंतु भाग्य तो नायक नायिकाओं की सफलता पर टिका होता है। वह हर कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता। खैर, भाग्य कर्म पर टिका है और कर्म भाग्य पर। इसलिए इस पर समय नष्ट करने के बजाय हमें अपने कर्म पर जोर देना चाहिए और जहां तक हो सके निष्काम कर्म करना चाहिए। बजाय एक सफल व्यक्ति के हमें कर्मठ व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि पहचान का संकट आपकी नींद हराम नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात और है, ये पहचान का संकट घर परिवार, समाज, संसार, जीवन मृत्यु हर जगह पाया जाता है। हमें सब लोग जाने, हमें सब लोग पहचाने, हमें सब लोग प्रसिद्ध माने, ये सब विचार श्रेणियां जब आपके भीतर प्रवेश कर जाती है तो मनुष्य विकार ग्रस्त होकर केवल और केवल अपनी पहचान के लिए जीना मरना शुरू कर देता है और यहीं से उसका जीवन संकटों से घिर जाता है। देखिए, बात सफल असफल की नहीं हो रही, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बात चल रही है सफलता को पहचान बनाने की। जब आप सफलता को जीवन का गारंटी कार्ड मान लेते हैं, तब की एक वैज्ञानिक 100 बार बल्कि 1000 बार असफल होता है, लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ता और अंततः अपने प्रयोग में सफल होकर दिखाता है। यह वैज्ञानिक सफल होने को अपनी पहचान का संकट नहीं बना रहा, जबकि हम लोग बना लेते हैं। अतः जहां तक हो सके अपनी पहचान को सफलता असफलता से न जोड़कर अपने काम में लगे रहें। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी।
1: आपने सुना आज का विचार, विषय था पहचान का संकट। आलेख और वाचक स्वर थे श्री प्रमोद कुमार शर्मा के। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातःकाल के 6:10 हो रहे हैं। समय है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं हरिओम सरन, नंदनी सरन और साथियों के गाए इस भजन के साथ।

कार्यक्रम में ये भजन था अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना की अंतिम प्रस्तुति प्रस्तुत है जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः काल के 6:30 बजने को है। समय है रामचरित मानस गान का। कार्यक्रम में आज सुनिए बालकांड के दोहा संख्या 289 से दोहा संख्या 291 की अंतिम चौपाई तक का सस्वर पाठ। स्वर है शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्वरी का।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राजपुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ

और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर प्रातःकाल के 6:40 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। किसान श्रोताओं के लिए अब से कुछ ही देर में होगा कार्यक्रम खेती की बातें। खरीफ की मुख्य फसलें विषय पर जानकारी देंगे श्री अश्वनी व्यास। प्रातः 6:50 का समय रहेगा लोक भजन का। सुबह 7 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सुप्रभात। मुंशी प्रेमचंद जयंती, डिजिटल इंडिया, सूचना का अधिकार जैसे विषयों पर होगी कार्यक्रम में चर्चाएं। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का प्रसारण समय रहेगा सुबह 7:30। तत्पश्चात आप फिल्मी गीतों का आनंद ले सकेंगे। सुबह 10 कार्यक्रम नई फिल्मों से गीतों में। सुबह 11 फिल्म संगीत में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। दिन में 12:40 और दोपहर 2:30 का समय भी रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। हमारी दूसरी सभा में शाम 6:05 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत में होगा एक ही फिल्म से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात्रि 8:15 पर भी आप फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे। रात्रि 9:15 का समय भी है फिल्म संगीत का। रात्रि 9:30 कार्यक्रम फिल्म संगीत में होगा एक ही संगीतकार। सुबह 8:30 लेकर उपस्थित होंगे हम कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में होगी वार्ता। बीकानेर के शोध संस्थान विषय पर वार्ताकार होंगे डॉक्टर नितिन गोयल।

कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा सुबह 8:45, दिन में 12:10 और रात्रि 7:45 भी आप सुगम संगीत का आनंद ले सकेंगे। लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा सुबह 9:10 और हमारी दूसरी सभा में रात्रि 8:30 भी होगा लोक संगीत। सुबह 9:15 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा में आप सुनेंगे विद्यार्थी क्या करें, वाचक स्वर रहेगा श्री चंद्रशेखर जोशी का, प्रस्तुति होगी श्री अशोक कुमार की, संयोजनकर्ता होंगे श्री अमित सिंह। सुबह 9:30 प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग NCERT। महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला जगत प्रसारित किया जाएगा दोपहर 1:05 पर, चर्चाएं होंगी कम लागत में घर से होने वाले उद्यम यानी व्यवसाय, प्रेमचंद का साहित्यिक संसार जयंती विशेष, बदलते मौसम में होने वाले संक्रामक रोग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन टिप्स। कार्यक्रम में आप सुनेंगी वार्ताएं, वार्ता होगी सामाजिक कुरीतियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका, वार्ताकार रहेंगी कल्पना श्रीवास्तव। हमारी दूसरी सभा के प्रारंभ में युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, आज की बात रहेगी परिवर्तन ही स्थाई है, लघु जानकारियां होंगी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, मेडिटेशन से तनाव प्रबंधन, नीति आयोग और ई व्हीकल जैसे विषयों पर। शाम 7:00 का समय रहेगा ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत का, चर्चा होगी कृषि संबंधी स्टार्टअप्स, एक जिला एक उत्पाद, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जनगणना से बेहतर योजना क्रियान्वयन। आकाशवाणी दिल्ली के हमारे आज के प्रसारणों में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

0: ये था हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:45 होने को है। समय है किसान श्रोताओं के लिए कार्यक्रम खेती की बातें का। खरीफ की मुख्य फसलें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्री अश्विनी व्यास।
1: किसान भाई राम राम। खरीफ रो मौसम जून सो सितंबर महीने तक रहा करे है। खरीफ रिजी की मुख्य फसलें हैं वे है गुड़, बादाम, काजू, खजूर, खरबूजो, तरबूज। जिसी फसल खेती करनी खरीफ रे मौसम में चाहिए। धान री फसल की अगर आप बात करा तो प्रमुख खरीफ री फसल मानी जावे और अभी अपने खरीफ रे मौसम में धान री रोपाई भी करनी चाहिए। चिके में बाजरो, ग्वार आदि शामिल है। जूट रो उत्पादन भी आप खरीफ री फसल रूप में कर सका। इसमें अपने कपड़ा, बांस और धागो आदि मिलो करे है। मक्का या कौन रो उत्पादन खरीफ रे मौसम में खरीफ री फसल रे रूप में पकड़ सका। किसान वास्तव ओ एक चोखो उत्पाद है जिके री चोखी आमदनी किसान भाई ले सके। उड़द री दाल री खेती भी खरीफ रे मौसम में करी जावे है। भारतीय भोजन रे मायने इरो बहुत ज्यादा उपयोग होवे है और बाजार में भी उड़द रा दाम बढ़ता चला जा रहा है। मूंगफली री खेती खरीफ रे मौसम में करी जा सके है। मूंगफली कई रूप में काम आवे। जिया मूंगफली रो आपा तेल निकाल बने काम में लेवा और बाजार में वो तेल बिके। मेरे सगे सगे कच्ची मूंगफली भी खाने रे काम में आवे। सिकोड़ी मूंगफली भी खाने रे काम में आवे और मूंगफली सु पीनट बटर नाम रो भी एक उत्पाद आजकल बाजार में मिले है तो मूंगफली रो भी बहुत ज्यादा उपयोग होवे। तिलहन रे रूप में देखा तो तिल रो जो बीज है वह भी खरीफ री फसल रो ही परिणाम है। तिल में सु तेल निकाल परो और वो भी चोखे दाम में बाजार में बिके है। ज्वार, बाजरो, पंखो, भुट्टो, धान।

0: आदि खरीफ रे फसल रामायण शामिल है। खरीफ रे वास्तर उपयुक्त खाद्य रूप में मिट्टी में खनिज तत्वों की उपलब्धता जरूरी है। वर्मी कंपोस्ट और कोड़ेरी गोबर की खाद रामायण बहुत गुणवत्तापूर्ण रहे और इस कृषि ने बहुत लाभ मिले। गोबर की खाद अगर आप बनाने की बात करें तो गोबर ने एक बड़े प्लास्टिक के डिब्बे या खुले स्थान पर भेड़ो करने है और ताजे गोबर के उपयोग में ही अपने प्राथमिकता देनी है क्योंकि रामायण बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व होवे। ई गोबर ने छान लेना है ताकि अनचाहा तत्व इसु अलग हो जावे। एक खाड़े रामायण प्लास्टिक का डब्बा राखकर गोबर ने राख देना है और इमें पानी घाल देना है। गोबर और पानी रो अनुपात जिको एक अनुपात एक होना चाहिए। इसु इन्हें चोखी तरह मिला लेना है और अपने ढकर 3-4 हफ्ता वास्ते धूप में राख देना है। धूप में राखन से गोबर री खाद बनने रीजी की प्रक्रिया है बा शुरू हो जावे। रोजी ना इन्हें एक बार अपने हिलाना है ताकि गर्मी इरे अंदर जाती रहे। पहली बार जब खेत में बीज बोवा पी टाइम गोबर री खाद रो उपयोग अपने खेत में करना चाहिए। बीज बोने से पहला गोबर री खाद मिट्टी में चोखी तरह मिला देनी चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जावे। गोबर की खाद ने फसल रे बाद बारीक डाल और उपज रे आसपास छिड़क देना भी फसल रे वास्ते फायदेमंद होवे। आप फसल की उर्वरकता ने बढ़ावे और मिट्टी ने भी पोषक और स्वस्थ करे। गोबर की खाद ने पानी रे सागे मिश्रण कर फॉलीज रे नीचे डालने से फसल ज्यादा फायदा दे सके और मिट्टी री उर्वरकता भी सु बढ़ सके। खरीफ री फसल चूंकि मानसूनी फसल है ई वास्ते कुछ चीजों रो भी आपने ध्यान रखनो जरूरी है। जिया बरसात री टाइम खेत रामायण पानी भेड़ो नहीं हुए तो पानी की उचित निकासी रो भी ध्यान रखनो जरूरी है। इधर सागे सागे जिक टाइम आपा कोई छिड़काव करा तो अगर हवा तेज चल रही हुए भी टाइम आपने छिड़काव को नहीं करनो। आपने प्रयास हो करनो है कि शाम री वक्त ही छिड़काव करनो है। छिड़काव करते टाइम जिका छिड़काव करने का उपकरण है वे सही होना चाहिए और जिको किसान भाई छिड़काव करे बेरो मुंडो और हाथ कपड़े से ढकोड़ा होना चाहिए और जिकी दिशा में हवा चल रही है वही दिशा में ही छिड़काव करते हुए अपन बिरे विपरीत खड़ो होना है ताकि छिड़काव री बूंद अपने तक नहीं आवे। तो छोटी छोटी चीजा रो ध्यान रखकर आपा खरीफ री फसल रे मायने चोखो लाभ कमा सका।
1: किसान श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। खरीफ की मुख्य फसलें विषय पर जानकारी दी थी श्री अश्विनी व्यास ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर प्रातः काल के 6:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है शेर मोहम्मद का गाया लोक भजन।

0: आपने सुना शेर मोहम्मद का गाया लोक भजन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोरा मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रातःकाल के 6:55 होने को है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंता प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकम् पारितम्। राज्यसभया एतत् विधेयकम् ह्यः पारितम्। लोकसभया तु बुधवासरे एव तत् अनुमोदितमासीत्। अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि प्रावधानानि अन्तर्भूतानि सन्ति। एतेषु दोषेभ्यः अधिकतमः 10 वर्षीयः कारावासः, 10 कोटिरूप्यकपर्यन्तः अर्थदण्डः तथा सम्पत्त्यधिग्रहणं सम्मिलितमस्ति। प्रकरणानां शीघ्रनिस्तारणं सुनिश्चितीकर्तुं प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासितप्रदेशस्य च प्रशासनाय विशेषद्रुतन्यायालयानां स्थापना विधेयके अनिवार्यतया विहिता। तथैव आरक्षिस्थानके सूचनापञ्जीकरणदिनाङ्काद् 2 मासाभ्यन्तरे अपराधानाम् अन्वेषणं भवेत्। अभियोगपत्रप्रस्तुतेः 3 मासाभ्यन्तरे च निर्णयो भवेत्। पूर्वं सदने विधेयकं निवेद्य डॉ. जितेन्द्र सिंहः अवदत् यत् एतत् विधेयकं राष्ट्रस्य विद्यार्थिनां युवजनानां च हितसंरक्षणे प्रशासनस्य दृढप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादयति। अनन्तरं सदनम् अद्य प्रातः 11:00 पर्यन्तं स्थगितम्। संसदा राष्ट्रीय गौरव अपमान

सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं हिंदी और उर्दू साहित्य के उस महान कथाकार की, जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय समाज की सच्चाई को शब्द दिए। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को, जिनकी जयंती आज ही के दिन हर साल 31 जुलाई को मनाई जाती है। प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि समाज के सजग प्रेरक थे। उन्होंने किसानों की पीड़ा, महिलाओं की स्थिति, गरीबी, शोषण, जातिगत भेदभाव, मानवीय संवेदनाओं को इतनी सरल भाषा में

प्रस्तुत किया कि उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं जितनी अपने समय में थी। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद का जन्म आज के दिन यानी 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने शुरू में नवाब राय नाम से लेखन किया, लेकिन बाद में प्रेमचंद नाम से साहित्य जगत में अमर हो गए। जीवन में अनेक आर्थिक कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने कभी भी लेखन का साथ नहीं छोड़ा। शिक्षक के रूप में कार्य किया, फिर स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह साहित्य और पत्रकारिता को ही समर्पित हो गए। प्रेमचंद की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो आम आदमी के लेखक थे। उनके पात्र हमारे आसपास के लोग हैं, किसान, मजदूर, महिलाएं, बच्चे, शिक्षक और समाज के वो लोग जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि और रंगभूमि शामिल हैं। वहीं उनकी कहानियाँ ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर आज भी पाठकों के दिल में विशेष स्थान रखती हैं। याद करें अगर उनकी कहानी ईदगाह को, नन्ना हामिद मेले में खिलौने या मिठाइयाँ नहीं खरीदता। वो अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है ताकि रोटी बनाते समय उनके हाथ ना जले। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग किसी भी वस्तु से बड़ा होता है। इसी तरह से अगर पूस की रात की बात की जाए तो पूस की रात में किसान हल्कू की ठिठुरती रात केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि उस दौर के लाखों किसानों का संघर्ष चित्रित है। और गोदान का होरी आज भी भारतीय किसान की मेहनत, उम्मीद और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। प्रेमचंद का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम भी है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, साहित्य समाज का दर्पण है, यानी साहित्य हमें वही दिखाता है, वही सिखाता है जो हमारे समाज में घटित हो रहा है। इसलिए उनकी रचनाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन का दस्तावेज है। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, तब भी प्रेमचंद की रचनाएं हमें संवेदनशील बनने, ईमानदारी से जीने और हर व्यक्ति के सम्मान का महत्व समझाती हैं। उनका साहित्य हमें सिखलाता है कि शिक्षा, समानता, न्याय और मानवीय मूल्यों से ही एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। श्रोताओं, प्रेमचंद की जयंती पर आइए हम अपने आप से वादा करें कि हम पढ़ने की आदत को बढ़ावा देंगे, साहित्य से जुड़ेंगे और समाज के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखेंगे। अगर आपने कभी भी प्रेमचंद की कोई रचना नहीं पढ़ी तो शुरुआत में ईदगाह, पंच परमेश्वर या फिर गोदान अवश्य पढ़ें। यकीन जानिए उनके शब्द आज भी हमारे दिल को उतनी ही गहराई से छुएंगे। वो समय ही और था श्रोताओं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां साहित्य भी भागदौड़ भरा हो गया है, बल्कि यूं कहें कि साहित्य कहीं खो सा गया है, वहीं सिनेमा जगत भी हमें वही सब दिखलाता है जो हमारे आसपास है। प्रेमचंद के समय का सिनेमा भी वही दर्शाता था जो उस समाज में घट रहा था। कार्यक्रम के इस गीत में हमें अनायास ही मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों की झलक देखने को मिलती है।

0: ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया,
1: ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया।
0: ओ सोने सा तुम भगवान

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मधु चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, दौर बदल गया, समय बदल गया, मुंशी प्रेमचंद का भारत भी बन गया डिजिटल इंडिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसा अभियान की जिसने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने की कोशिश की है, और इसी अभियान का नाम है डिजिटल इंडिया। श्रोताओं, आज मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि बैंक, स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, बाजार, सब कुछ हमारी मुट्ठी में समा गया है। यही है डिजिटल इंडिया की ताकत। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई। इसका उद्देश्य था तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना, सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाना और हर नागरिक को डिजिटल रूप से मजबूत करना, सशक्त बनाना। पहले किसी सरकारी प्रमाण पत्र के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिजली के बिल, गैस की बुकिंग, पेंशन, छात्रवृत्ति और अनेक सरकारी योजनाओं की जानकारी अब घर बैठे मिल सकती है। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा था कि जेब में नकद पैसे ना हो और फिर भी खरीदारी हो जाए? जी हाँ, आज यूपीआई और डिजिटल भुगतान ने ये मुमकिन कर दिखाया है। चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल तक लोग मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं। इससे वक्त भी बचता है और लेन देन भी आसान हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया ने नई दिशा दी है। अब विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, डिजिटल किताबें पढ़ रहे हैं और देश विदेश के विशेषज्ञों से सीख रहे हैं। गाँवों के छात्रों को भी बेहतर शिक्षा सामग्री तक पहुंच मिल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई जगह लोग ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध हो रही है। किसानों के लिए भी डिजिटल तकनीक वरदान साबित हो रही है। मौसम की जानकारी, फसल संबंधी सलाह, बाजार के भाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी अब मोबाइल के जरिए आसानी से हासिल की जा सकती है। इससे किसान बेहतर फैसले ले पा रहे हैं। महिलाओं के लिए भी डिजिटल सशक्तिकरण नए अवसर लेकर आया है। आज अनेक महिलाएं घर बैठे ही ऑनलाइन व्यवसाय कर रही हैं, हस्तशिल्प और घरेलू उत्पाद इंटरनेट के जरिए देश भर में बेच रही हैं। डिजिटल माध्यम ने आत्मनिर्भरता की नई राहें खोल दी हैं। लेकिन श्रोताओं, हर तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। डिजिटल दुनिया में साइबर सुरक्षा बेहद जरूरी है। कभी भी अपना ओटीपी, बैंक पासवर्ड, एटीएम पिन या अन्य गोपनीय जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें और केवल विश्वसनीय वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ इंटरनेट चलाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है तकनीक का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल, डिजिटल साक्षर बनना और दूसरों को भी जागरूक करना। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिजिटल देशों में गिना जाता है। लाखों लोग ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठा

संस्थाएं, स्टार्टअप, डिजिटल उद्यम और नई तकनीकें देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तो श्रोताओं, अगर आपके परिवार या आसपास कोई व्यक्ति डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो उसकी मदद करें, उसे ऑनलाइन भुगतान करना सिखाएं, सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करना सिखाएं और सुरक्षित इंटरनेट चलाना सिखाएं। यही डिजिटल इंडिया की सच्ची भावना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो तकनीक से जुड़ा हो, जहां तकनीकी ज्ञान से लोग समृद्ध हों और अवसरों से भरपूर हो भारत। भारत हमेशा से ही दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखता है। किसानों से लेकर तकनीक की दुनिया और बड़ी बड़ी कंपनियों तक भारत विश्व को हमेशा देता ही आया है। तो भारत की इस महानता को समर्पित है कार्यक्रम का अगला गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आजाद भारत ने हमें बहुत सारे अधिकार भी दिए हैं, उसी में से एक विशेष अधिकार है सूचना का अधिकार। जी हाँ, सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन ने आम नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने की ताकत दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव की सड़क बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ या किसी सरकारी योजना का लाभ किसे मिला? इन सवालों का जवाब पाने का कानूनी अधिकार आपको RTI देता है। सवाल है, RTI यानी सूचना का अधिकार है क्या? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हर भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। किन किन विभागों से जानकारी मांगी जा सकती है? तो श्रोताओं, हम लगभग सभी सरकारी विभागों से सूचना मांग सकते हैं, जैसे पंचायत और नगर निकाय, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस, सरकारी अस्पताल, बिजली पानी, राजस्व विभाग, जिला प्रशासन, राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालय। सवाल है, हम किस तरह की जानकारी मांग सकते हैं? तो जवाब है, विकास कार्यों पर खर्च का विवरण पूछा जा सकता है, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूचना और सूची जानी जा सकती है, किसी आवेदन या शिकायत की वर्तमान स्थिति जानी जा सकती है, सरकारी नियुक्ति और चयन प्रक्रिया से जुड़ी हुई जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं, वहीं सरकारी परियोजनाओं के रिकॉर्ड और दस्तावेज भी हासिल किए जा सकते हैं। RTI की प्रक्रिया क्या है? तो ये भी बहुत आसान है। संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी यानी PIO को आवेदन लिखें, स्पष्ट भाषा में बताएं कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए, निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराएं। आवेदन डाक, ऑनलाइन या स्वयं कार्यालय जाकर जमा कराया जा सकता है। आमतौर पर 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य होता है। अगर सूचना ना मिले, अगर निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलती है या अधूरी जानकारी मिलती है श्रोताओं, तो आप प्रथम अपील और जरूरत पड़ने पर द्वितीय अपील भी कर सकते हैं। तो श्रोताओं, RTI का महत्व केवल जानकारी लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये भ्रष्टाचार रोकने और शासन को जवाबदेह बनाने का

अभी साधन भी है। इसके जरिए से अनेक नागरिकों ने रुके हुए कार्य पूरे करवाए हैं और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाई गई है। ध्यान देने लायक बातें ये है श्रोताओं कि केवल तथ्य और उपलब्ध रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी ही मांगे। प्रश्न स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। किसी अधिकारी से राय या व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। कुछ सूचनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, न्यायालय के निर्देश या व्यक्तिगत गोपनीयता के कारण कानून के तहत सार्वजनिक नहीं की जाती है। श्रोताओं, जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। जब नागरिक अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को समझते हैं तभी शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। सूचना का अधिकार हमें यही ताकत देता है कि हम जानकारी प्राप्त करें, सवाल पूछें और विकास कार्य में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो ऐसा भारत जो हमें सवाल पूछने की ताकत देता है, हमें अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाता है, ये भारत हमारे लिए सुबह के वो आयाम लेकर आया है जो हमें विकास के हर संभव मौके उपलब्ध कराता है। कोई भी अंधेरा एकदम नहीं।

गोपनीयता के कारण कानून के तहत सार्वजनिक नहीं की जाती है। श्रोताओं, जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। जब नागरिक अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तभी शासन अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। सूचना का अधिकार हमें यही ताकत देता है कि हम जानकारी प्राप्त करें, सवाल पूछें और विकास कार्य में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो ऐसा भारत जो हमें सवाल पूछने की ताकत देता है, हमें अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए सक्षम बनाता है, ये भारत हमारे लिए सुबह के वो आयाम लेकर आया है जो हमें विकास के हर संभव मौके उपलब्ध कराता है। कोई भी अंधेरा एकदम नहीं हटता श्रोताओं, सुबह धीरे धीरे ही होती है। आवश्यकता सिर्फ प्रयास करते रहने की है ताकि धीरे धीरे होने वाला उजाला अंधेरों का नाश कर सके।

0: गली।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो श्रोताओं, हम अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसी प्रण के साथ कार्यक्रम सुप्रभात से दिया ज्ञान। नमस्कार।

आप सुन रहे थे सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ज पर। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में पहला गीत। फिल्म है जब याद किसी की आती है। राजा मेहंदी अली खान है गीतकार, संगीतकार है मदन मोहन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान

0: एआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणिपुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म आशा से। आनंद बख्शी ने गीत को बोल दिए हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगले गीत में आवाज फिर से है लता मंगेशकर की, फिल्म है चुपके चुपके। गीत को बोल दिए हैं आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाजों में फिल्म सिंदूर से आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था सिंदूर। आवाजें लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की थी। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है जैसे को तैसा। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की गाये फिल्म जैसे को पैसा के इस गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मेजम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को ही आकाशवाणी दिल्ली से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026

0: 2022 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करते देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: भर तुम्हें मनरेगा जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बन गए 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मांग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय

0: राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबरी मंदीप जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश गठजोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
2: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड जैसे जिले शामिल हैं। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में नियंत्रित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता जबकि सीमा कलीरामी ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए।

0: 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाश किए हैं, असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्ता लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, पार्लियामेंट पासेस पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल विद स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर पेपर लीक्स। Prime Minister Narendra Modi welcomes passage of the bill, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announced maritime defense alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovpreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kalirammana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, this issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country. He said that the National Education

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। समय हो चला है कार्यक्रम सौरभ का। कार्यक्रम में आज सुनिए वार्ता बीकानेर के शोध संस्थान विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर नितिन गोयल।
1: बीकानेर के शोध संस्थान औपचारिक रूप से एक संरचित इकाई है। वास्तव में शोध संस्थान मुख्य रूप से सहयोगी अनुसंधान, अनुसंधान प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रसार के रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से विद्वानों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। शोध या ये कहें उस प्रक्रिया का नाम है जो बोधपूर्वक प्रयत्नों से तथ्यों के संकलन कर सूक्ष्मग्रही एवं विवेचन वृद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण कर नए तथ्यों सिद्धांतों का उद्घाटन करता है। इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। यह मानव ज्ञान की दिशा प्रदान करता है, ज्ञान भंडार को विकसित व परिमार्जित करता है और इसी क्रम में भारतीय साहित्य, संस्कृति, इतिहास, परंपराओं के संरक्षण उद्देश्य से व शोध कार्यों में योगदान देने के लिए भारत के अन्य भागों की भांति मरुआंचल के नगर बीकानेर में भी शोध संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। इनमें से कुछ संस्थाएं राजकीय हैं व कुछ गैर राजकीय जिसे कहीं सेमी गवर्नमेंट या व्यक्तिगत प्रयासों से द्वारा भी बनाई गई हैं। वर्तमान में गतिमान संस्थाओं में से कुछ कतिपय संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी उल्लेख मैं यहां पर अपनी चर्चा के दौरान आप श्रोताओं से करना चाहूंगा। सर्वप्रथम इस कड़ी में मैं जो नाम लेना चाहूंगा वो है बीकानेर के रतन बिहारी मंदिर पार्क में स्थित भारतीय विद्या मंदिर शोध प्रतिष्ठान। यह संस्थान पिछले 50 वर्षों से प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, संग्रह, अनुवाद, संपादन, प्रकाशन और लोक साहित्य को लिपिबद्ध कर उसका बातों, ख्यातों, कहावतों, मुहावरे संग्रह में उनका प्रकाशन और संपादन के अंदर जुड़ा हुआ है, लगोलग लगा हुआ है। इस उद्देश्य हेतु उसने राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर अनेक सेमिनारों, प्रदर्शनियों, चर्चाओं, संगोष्ठियों, हस्तलिखित पांडुलिपियों के संग्रह के साथ उनके प्रकाशन कार्य को शोध जगत के लिए उपलब्ध करवाने का भी कार्य किया है। प्रतिष्ठान में शोध सुविधाओं को विकसित करने हेतु शोध प्रतिष्ठान में एक समृद्ध पुस्तकालय भी है जिसमें देश की दुर्लभ पुस्तकें एवं शोध पत्रिकाओं का एक अकूत भंडार है। संस्थान पुस्तकालय में विभिन्न विषयों से संबंधित लगभग 15,000 पुस्तकों का एक संग्रह को रखता है। इनमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो संतवाणी जिसका एक अपूर्ण संग्रह है, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय और अन्य संप्रदायों जिसके अंदर कबीर, नानक और उनकी वाणियां भी संकलित हैं। इसके अलावा संत काजी मोहम्मद, संत रजब,

आदि के हस्तलिखित गुटकों का संग्रह भी इस भारतीय विद्यामंदिर शोध संस्थान के पुस्तकालय में शोधार्थियों के अध्ययन शोध अध्ययन हेतु किया गया है। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़े तो हम पाते हैं राम रासो, अवतार चरित्र, श्रीमद भगवद गीता, दोहा, कल्प सूत्र, राम राख्या आदि अनेक हस्तलिखित ग्रंथों, इसी के साथ साथ मीणता बहिया उनका एक विशाल संग्रह है जिसके अंदर रुक्के परवाने आदि हस्तलिखित ग्रंथों को भी शोध प्रतिष्ठान के अंतर्गत संग्रहित किया गया है। पुस्तकालय में विभिन्न शोध पत्रिकाओं का भी संग्रह है। लगभग 130 से अधिक शोध पत्रिकाएं जो भारत के विभिन्न अंचलों के अंदर प्रकाशित होती हैं, उनका यहाँ पर हमें पुस्तकालय के अंदर उपलब्धता मिलती है, जो शोध हेतु बहुत ही उपयोगी है, जो कि शोधार्थियों के द्वारा बड़ी सहज रूप से उपलब्ध करवाई गई है। संस्थान में बाबा रामदेव की जीवनी, राजस्थान के लोकगीत, उनका सामाजिक अध्ययन, शब्द चर्चा, अनुक्रमणिका, सिद्ध देव ग्रंथावली, राजस्थानी लोक कथाएं आदियों का भी संकलन किया गया है। संस्थान के अंतर्गत 40 से अधिक पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है, जिनका विवरण कहा जाए तो रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो, प्राचीन काव्यों की रूप परंपरा, चाणक्य नीति, गंगोर, गवरजा, मीराबाई, राजस्थानी लोक, महाभारत आदि बड़ी प्रमुख किताबें हैं, गोगा जी की कथा, ये सारी पुस्तकें जो भी व्यक्ति भक्ति साहित्य पे या भक्ति काल पर अगर शोध करता है तो उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो पिछले 50 वर्षों से देश विदेश के सैकड़ों विद्यार्थियों ने, शोधार्थियों को इस संस्थान के द्वारा उपलब्ध सामग्री प्रोवाइड करवाया गया है और शोध प्रकल्प के कार्यों को पूर्ण किया गया है। तो ऐसे में बीकानेर का ये एक प्रमुख पुराना एक शोध संस्थान है, भारतीय विद्यामंदिर शोध संस्थान। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़े तो राजकीय रूप से राजकीय प्रयासों के द्वारा भी राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की भी स्थापना की गई है। ये हम जानते हैं कि राजस्थान की भूमि पर सतत युद्ध चलते रहे, अनवरत परंतु साथ साथ अनवरत साहित्य की सर्जना भी चलती रही। जहां राज्य आश्रम में कवि पंडितों साहित्य सर्जन किया गया, वहीं जैन आचार्यों ने उपासरों में चातुर्मासिक अध्ययन की परंपरा को भी सहस्त्र ग्रंथों के माध्यम से बनाए रखा गया। ग्रंथ प्रणयन और संरक्षण की इसी दीर्घ पावन भूमि पर उपलब्ध ग्रंथों के संरक्षण, संपादन और प्रकाशन की आवश्यकता का अनुभव करते हुए स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा पुरातत्वाचार्य मुनि श्री जिन विजय जी की प्रेरणा से 1950 में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। 1955 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस विभाग के मुख्यालय जो कि जोधपुर स्थित है उस भवन का शिलान्यास किया था। 1961 में बीकानेर, कोटा, अलवर, उदयपुर इन सब शाखा कार्यालयों की स्थापना की गई थी। मूलतः ये संस्थान जो आज राजस्थान प्राच्य विद्या के नाम से है, पूर्व के अंदर ये संस्कृत मंडल के नाम से था। समय के साथ जब इसकी संस्थापना और इसमें प्रचार प्रसार विकास हुआ तो इसके नाम को बदलकर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान किया गया। प्राच्य का रूप मतलब होता है देशज, वो साहित्य, वो पांडुलिपियां जो हमारे खुद के देशज रूप से उनको लिखा गया है, उनको तैयार किया गया है। तो ये प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत मूल रूप से ऐसी चीजें रखी गई है जो भारतीयों के द्वारा ही तैयार की गई, लिखी गई, बनाई गई, सृजित की गई, अंकित की गई। यद्यपि प्रतिष्ठान का निदेशालय जोधपुर है जिसके संग्रह में लगभग 88 से ज्यादा हस्तलिखित ग्रंथ है, 981 प्रतिलिपियां और 273 फोटो प्रतियां हैं जिन्हीं के अंदर। हस्तलिखित ग्रंथ संग्रह के अंदर बात करें तो इनके अंदर जिन भाषाओं में यह ग्रंथ पाया जाता है उनमें है संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, राजस्थानी और भी अन्य भाषाएं, जिनकी लिपियों के अंतर्गत इन ग्रंथों की, इन पांडुलिपियों को संग्रहित किया गया है, जिनके अंतर्गत खरड़े, पट्टे आदि सभी संग्रहित हैं। इन संग्रह में हमें वेद, वेदांग, स्मृति, इतिहास, पुराण, दर्शन, बौद्ध, जैन, भक्ति, तंत्र, आगम, मंत्रशास्त्र, काव्य, व्याकरण, कोश, छंद, अलंकार, नाट्य, संगीत, शिल्प, अर्थशास्त्र, राजशास्त्र, खगोलशास्त्र, कामशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि विषय से संबंधित ग्रंथों की उपलब्धता मिलती है। एक बड़ा ही वृद्ध भंडार है भारतीय ज्ञान परंपरा का राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के पास। लगभग 1,29,000 पांडुलिपियों का संग्रह इस प्रतिष्ठान ने अपने पास रखा है। वर्तमान के अंदर इसी की एक शाखा जो कि बीकानेर के अंतर्गत है उसमें लगभग 30,000 से ज्यादा पांडुलिपियों का संग्रहण किया गया है। कागज पर लिखित 13वीं शताब्दी लगभग 1204 ईस्वी का प्राचीनतम ग्रंथ दिव्यानालोकन लोचन भी इसी प्रतिष्ठान के पास ही है। विभिन्न कल्प स्रोत के अनेक नमूने उपलब्ध है जिनमें 1485 ईस्वी में रचित कल्प सूत्र प्राचीनतम है। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर शैली में लिखित श्रीमद भगवद गीता का अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ कागज खरड़े पर लिखा हुआ है और इसकी लिपि को माइक्रोस्कोप की सहायता से ही पढ़ा जा सकता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय साहित्य, संस्कृति को पांडुलिपि फॉर्म के अंदर संरक्षित रखने का

लंबे समय से कार्य किया जा रहा है। 1961-62 में बीकानेर शाखा के अंदर प्राच्य विद्या के मोतीचंद खजानती संग्रह, जयचंद जी संग्रह, प्रन्यास हिम्मत विजय जी संग्रह, आनंद विजय जी संग्रह, ये सब संग्रह जो कि जैन मुनियों के द्वारा रचित हैं, उन सब का संग्रह किया गया। इन संग्रहों के अंदर में कल्पसूत्र, क्षेत्रमास, संग्रहिणी, कालकाचार्य इत्यादि अनेक दुर्लभ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं। 19वीं शताब्दी में रचित गढ़ की स्थापना, शहर बसाया तिन्द्र विगत, विल्लन कविरत, विलोजी का कवित जो कि विष्णु संप्रदाय के लिए एक प्रमुख ग्रंथ है, उनका पर्यावरणीय इतिहास को उजागर करने वाले पक्षियों की शकुनावली, बारामासा, ये सब ग्रंथ हमें राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। इन शोध संस्थानों के अंतर्गत विभिन्न शोधार्थी, चाहे वो देश के हों विदेश के हों, आकर अपने शोध विषयों से संबंधित पांडुलिपियों को प्राप्त करते हैं और उन पांडुलिपियों को अध्ययन कर अपनी शोध विवेचना को प्रस्तुत करते हैं। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के समस्त ग्रंथ डिजिटाइज हुए हैं। मैं आपको बताते हुए बड़ा प्रसन्नचित महसूस करता हूँ कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले किसी सरकारी संस्थान ने, राज्य के संस्थान ने जब डिजिटाइजेशन का कार्य किया तो वो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान ही था। आज जितने भी अन्य संस्थान उत्पन्न हुए हैं उन सब में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है जिसका 99% से ज्यादा रिकॉर्ड डिजिटाइज है। आप इन हाउस यानी कि प्रतिष्ठान की शाखा में उपस्थित होकर डिजिटाइज रिकॉर्ड की डिजिटल प्रतिलिपियां नॉमिनल चार्जेस के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के अंदर विभिन्न विषय विशेषज्ञों को बुलाकर नियमित रूप से सुनी लिखी पढ़ी श्रृंखला भी प्रारंभ की गई है। प्रतिष्ठान कोरोना काल के बाद अपने आप को नवीन तकनीकियों से जोड़ते हुए विभिन्न मीडिया के जो संसाधन है, चाहे वो चैनल यूट्यूब है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से भी अपनी उपस्थिति को दर्शाने के अंदर सक्षम रूप से कामयाब रहा है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार, संरक्षण, व्यवस्थापन, उन सब के कार्य के अंदर 1983 से राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की गई है। इस संस्थान के द्वारा लगभग 60 से ज्यादा पब्लिकेशन यानी प्रकाशनों को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसके अंदर हमारे पास कई ऐसी प्रकाशन है जो कि राजस्थानी के जो विद्यार्थी हैं, जो विभिन्न कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी बड़े उपयोगी हैं। जैसे राजस्थान के कवि हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो कि इसके द्वारा अकादमी के द्वारा प्रकाशित की गई। प्रकाशित अकादमी के द्वारा एक सबसे बड़ी जो जात की जो पत्रिका है, जो 1971 से लगातार प्रकाशित होती जा रही है, इस पूरी पत्रिका को डिजिटाइज फॉर्म के अंदर इजी सर्च इंजन के माध्यम से अकादमी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करवाया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी राजस्थानी विषय के ऊपर अपनी सर्च इंजन दिया गया है, उसके ऊपर पॉइंट आउट कर उसमें अपना संबंधित चीज को, उसकी प्रतिलिपि को वीडियो फॉर्म के अंदर निशुल्क प्राप्त कर सकता है। ये अकादमी की एक बड़ी देन है जो कि राष्ट्र की किसी भी अन्य अकादमी के द्वारा अभी तक नहीं की गई है। तो राजस्थानी भाषा को अक्षुण और उसके प्रचार प्रसार के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसके अंदर राजस्थानी भाषा अकादमी भी एक शोध प्रतिष्ठान के रूप में, एक शोध संस्थान के रूप में लंबे समय से कार्यरत होकर कार्य कर रही है। इसी के अलावा बीकानेर के अंदर अगरचंद नाहटा पुस्तकालय, जो कि अगरचंद जी नाहटा के द्वारा लगभग 1960-70 के आसपास से स्थापित किया गया है, और इस संस्थान में भी पुरानी पांडुलिपियों का संग्रहण किया जाता है। इसी संदर्भ में नॉन में अनूप संस्कृति पुस्तकालय भी है जो कि रॉयल हाउस के द्वारा कराया गया, और ये लगभग 16वीं शताब्दी की पांडुलिपियों को संग्रहण कर रहा है, जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अनूप सिंह जी, जो कि औरंगाबाद के अंदर मुगल मनसबदार के रूप के अंदर नियुक्त थे, उन्होंने वहां से जो पांडुलिपियां प्राप्त करी वो लाए। और इसी क्रम के अंदर राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी है, जो कि प्रशासकीय रूप से जो गतिविधियां, प्रशासकीय रूप से जो कागज 17वीं शताब्दी के बाद क्रिएट किए गए, उनके संग्रहण का।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में थी वार्ता बीकानेर के शोध संस्थान, वार्ताकार थे डॉक्टर नितिन गोयल। लीजिए सुनिए देशभक्ति सहगान।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा, विद्यार्थी क्या करें। वाचक स्वर है श्री चंद्रशेखर जोशी का, प्रस्तुति है श्री अशोक कुमार की, संयोजन करता है श्री अमित सिंह।

नमस्कार, गांधी चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में प्रस्तुत है विद्यार्थी क्या करें विषय पर गांधी जी के विचार। सारे देश की भांति विद्यार्थियों में भी एक प्रकार की जागृति और अशांति फैल गई है। ये शुभ चिन्ह है, लेकिन ये सहज ही अशुभ भी बन सकता है। भाप को अगर कैद कर ले तो उससे वाष्प यंत्र बनाया जा सकता है और उसकी प्रचंड शक्ति कल्पना से भी अधिक बोझ घसीट कर ले जाती है। यदि उस शक्ति का संचय न किया जाए तो या तो वो व्यर्थ चली जाती है या नाशकारी बन जाती है। इसी तरह विद्यार्थियों आदि में आज जो भाप पैदा हो रही है उसका अगर संग्रह न किया जाए तो वो व्यर्थ चली जाएगी अथवा हमारा नाश ही कर डालेगी, और अगर उसका बुद्धिपूर्वक उपयोग किया गया तो उससे प्रचंड शक्ति पैदा होगी। बापू कहते हैं कि आजकल गुजरात कॉलेज के विद्यार्थियों की हड़ताल जारी है, वो ऐसी ही उत्पन्न भाप का परिणाम है। मैंने जो हकीकत सुनी है उससे मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थियों की हड़ताल मर्यादानुकूल है और उनकी शिकायत न्याय्य है। उन्होंने अक्टूबर में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया था और कॉलेज से गैर हाजिर रहे थे। उनके ऐसा करने पर प्राचार्य ने ये निश्चय किया कि उनमें से जो परीक्षा में बैठना चाहेंगे उन्हें इसके लिए फीस के 3 रुपए भरने होंगे। जो परीक्षा न देना चाहे तो उन्हें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। मैं सुन रहा हूँ कि ये निर्णय कर चुकने के बाद भी प्राचार्य ने दूसरी ही नीति स्वीकार की है और वे सबको 3 रुपए जमा करके परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने इस हुक्म के विरोध में हड़ताल की है, और अगर वस्तु स्थिति पहले बताई गई है वैसी ही है तो कहना पड़ता है कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन युवक संघ के अध्यक्ष कहते हैं कि प्राचार्य महोदय क्रोधित हो उठे हैं और वो हड़ताल को साम्राज्य के लिए खतरे की चीज समझते हैं। हड़ताल निर्दोष है, जवानी के जोश का चिन्ह है, उसे जवानी की चेष्टा मात्र समझकर प्राचार्य महोदय खतरे को हटा सकते हैं। लेकिन अगर वो उसे खतरा समझकर उसे महापाप माने और विद्यार्थियों को कठोर या अन्य कोई सजा देने का हठ करें तो आज जो चीज खतरा नहीं है संभव है कल बड़ा भारी खतरा बन बैठे। बापू कहते हैं कि 1857 के गद्दर के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भारतवर्ष के आकाश में अंगूठे जितना प्रतीत होने वाला बादल एक क्षण में विराट स्वरूप धारण कर सकता है, और वो ऐसा स्वरूप कब धारण करेगा कोई कह नहीं सकता। इसलिए चतुर मनुष्यों को चाहिए कि वे छोटे दिखने वाले निर्दोष बादल की अवगणना न करें, बल्कि उसे चिन्ह रूप माने और उसका योग्य उपचार करें। बापू कहते हैं कि ये हड़ताल अंगूठे के आकार की एक बदली है, लेकिन उसमें बिजली गिराने की शक्ति पैदा हो सकती है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी शक्ति पैदा हो। मुझे वर्तमान ब्रिटिश राज्य प्रणाली के प्रति न तो मान है न प्रेम ही। मैं उसे शैतान की कृति का नाम दे चुका हूँ। मैं निरंतर इस प्रणाली के नाश की इच्छा किया करता हूँ। वो नाश भारतवर्ष के नवयुवक और नवयुवतियों द्वारा हो ये सब तरह से इष्ट है। इस नाशक शक्ति को प्राप्त करना विद्यार्थियों के हाथ की बात है। अगर वे अपने भीतर उत्पन्न शक्ति का संग्रह करें तो आज वे उस शक्ति को पैदा कर सकते हैं। बापू कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी अपनी शुरू की हुई हड़ताल सफल करें। अगर उन्होंने शुरुआत ही न की होती तो उन्हें कोई कुछ भी न कहता। शुरुआत करने के बाद अगर वे हिम्मत हार कर बैठ जाएं तो अवश्य ही निंदा के पात्र बनेंगे और अपने आप को तथा देश को हानि पहुंचाएंगे। हड़ताल का अधिक से अधिक कटु परिणाम तो इतना हो सकता है कि प्रिंसिपल साहब विद्यार्थियों का हमेशा के लिए या लंबे समय

उन्हें बहिष्कार करे अथवा उन्हें फिर से भर्ती करने के लिए कोई दंड निश्चित कर दे। इन दोनों चीजों को विद्यार्थियों को हर्ष पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। रण क्षेत्र में कूदने के बाद वीर पुरुष कभी पीछे पैर हटाता ही नहीं है, इसी तरह ये विद्यार्थी भी अब पीछे नहीं हट सकते। हाँ, विद्यार्थियों को विनय का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। वे प्राचार्य के या अध्यापकों के संबंध में एक भी कड़वे शब्द का उच्चार न करें। कठोर शब्द बोलने वाले का नुकसान करते हैं, जिनके लिए कहे जाते हैं उनका नहीं। विद्यार्थियों को अपने वचन का पालन करके और कठोर काम करके बतलाना है, जरूर उसका असर होगा। उसमें से इस राज्य प्रणाली का नाश करने की शक्ति पैदा होगी, ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता। हमारे युवक और युवतियां चीनी विद्यार्थियों के उदाहरण को याद रखें। उनमें के एक दो नहीं बल्कि 50,000 विद्यार्थी गांवों में फैल गए और थोड़े से समय में उन्होंने छोटे बड़े सबको आवश्यक अक्षर ज्ञान देकर तथा दूसरी बातों का ज्ञान देकर तैयार कर लिया। अगर विद्यार्थी स्वराज्य यज्ञ में बड़ी तादाद में अपना हाथ बंटाना चाहते हों तो उन्हें चीनी विद्यार्थियों के समान कुछ करके बतलाना चाहिए। बापू कहते हैं कि जैसा मैं समझ सका हूँ उसके अनुसार तो विद्यार्थी शांतिमय युद्ध में आहुति देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरे समझने में भूल हो गई हो तो भी पहले वाली बात तो आत्मबल और पशुबल दोनों प्रकार के युद्ध पर लागू होती है। अगर हम गोला बारूद से लड़ना चाहें तो भी संयम का पालन करना पड़ेगा, भाप का संग्रह करना पड़ेगा। एक खास हद तक तो दोनों का रास्ता एक ही है। इस्लाम में खलीफाओं ने, ईसाई धर्म में क्रुसेडरों ने और राजनीति में क्रॉमवेल तथा उसके योद्धाओं ने भोग विलास का अपूर्व त्याग किया था। आधुनिक उदाहरण लें तो लेनिन, सत्यान सेन आदि में सादगी, तुखादी की सहन शक्ति, भोग त्याग एक निष्ठा और सतत जागृति का योगियों को भी शर्माने वाला नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। उनके अनुयायियों ने भी वफादारी और नियम पालन का वैसा ही उज्ज्वल उदाहरण पेश किया है। बापू कहते हैं कि हमारे निस्तार का भी यही उपाय है। हमारा त्याग आज भी कोई बड़ा त्याग नहीं है, वो नगण्य है। अनुशासन की हमारी शक्ति थोड़ी है, हमारी सादगी अपेक्षाकृत कम है, हमारी निष्ठा नहीं के बराबर ही कही जा सकती है, और दृढ़ता तथा एकाग्रता दर्शन तो प्रारंभ काल में ही होता है। इसलिए देश के नौजवान याद रखें कि उन्हें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने जो कुछ किया है उसे मैं भूला नहीं हूँ। उन्हें मुझसे स्तुति पाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। मित्र की स्तुति करने वाला व्यक्ति तो भाट बन जाता है। मित्र का काम तो कमजोरियां बताकर उनके परिमार्जन का प्रयत्न करना है। ये थे विद्यार्थी क्या करें विषय पर गांधी जी के विचार। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत। कलाकार थी आबिदा परवीन। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने को ही आकाशवाणी जयपुर से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारो चैनल है। स्वयं को संयत रखें, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। सत्य का मार्ग कभी ना छोड़ें। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।

शास्त्र में सबसे बलवान है। बिना परिश्रम सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती।

जीवन परिवर्तन का नाम है। रुके नहीं, चलते रहें।

व्यर्थ की बातों में स्वयं को ना उलझाएं। मानसिक शांति ही मानसिक चेतना का आधार है।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 होने को हैं। समय है लोक संगीत का। लीजिए सुनिए अल्लाह जिलाई पाई को।

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर सुबह के 9:15 होने को हैं। समय है गांधी चर्चा का, विद्यार्थी क्या करें, विषय है ये गांधी चर्चा का। वाचक स्वर है श्री चंद्रशेखर जोशी का, प्रस्तुति है श्री अशोक कुमार की, संयोजन करता है श्री अमित सिंह।

नमस्कार, गांधी चर्चा में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में प्रस्तुत है विद्यार्थी क्या करें विषय पर गांधी जी के विचार। सारे देश की भांति विद्यार्थियों में भी एक प्रकार की जागृति और अशांति फैल गई है। ये शुभ चिन्ह है, लेकिन ये सहज ही अशुभ भी बन सकता है। भाप को अगर कैद कर ले तो उससे वाष्प यंत्र बनाया जा सकता है और उसकी प्रचंड शक्ति कल्पना से भी अधिक बोझ घसीट कर ले जाती है। यदि उस शक्ति का संचय न किया जाए तो या तो वो व्यर्थ चली जाती है या नाशकारी बन जाती है। इसी तरह विद्यार्थियों आदि में आज जो भाप पैदा हो रहे हैं उसका अगर संग्रह न किया जाए तो वो व्यर्थ चली जाएगी अथवा हमारा नाश ही कर डालेगी, और अगर उसका बुद्धिपूर्वक उपयोग किया गया तो उससे प्रचंड शक्ति पैदा होगी। बापू कहते हैं कि आजकल गुजरात कॉलेज के विद्यार्थियों की हड़ताल जारी है, वो ऐसी ही उत्पन्न भाप का परिणाम है। मैंने जो हकीकत सुनी है उससे मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थियों की हड़ताल मर्यादानुकूल है और उनकी शिकायत न्याय्य है। उन्होंने अक्टूबर में साइमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया था और कॉलेज से गैर हाजिर रहे थे। उनके ऐसा करने पर प्राचार्य ने ये निश्चय किया कि उनमें से जो परीक्षा में बैठना चाहेंगे उन्हें इसके लिए फीस के 3 रुपए भरने होंगे। जो परीक्षा न देना चाहे तो उन्हें कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। मैं सुन रहा हूँ कि ये निर्णय कर चुकने के बाद भी प्राचार्य ने दूसरी ही नीति स्वीकार की है और वे सबको 3 रुपए जमा करके परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विद्यार्थियों ने इस हुक्म के विरोध में हड़ताल की है, और अगर वस्तु स्थिति पहले बताई गई है

ऐसी ही है तो कहना पड़ता है कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन युवक संघ के अध्यक्ष कहते हैं कि प्राचार्य महोदय क्रोधित हो उठे हैं और वो हड़ताल को साम्राज्य के लिए खतरे की चीज समझते हैं। हड़ताल निर्दोष है, जवानी के जोश का चिन्ह है, उसे जवानी की चेष्टा मात्र समझकर प्राचार्य महोदय खतरे को हटा सकते हैं। लेकिन अगर वो उसे खतरा समझकर उसे महापाप माने और विद्यार्थियों को कठोर या अन्य कोई सजा देने का हठ करें, तो आज जो चीज खतरा नहीं है संभव है कल बड़ा भारी खतरा बन बैठे। बापू कहते हैं कि 1857 के गद्दर के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भारतवर्ष के आकाश में अंगूठे जितना प्रतीत होने वाला बादल एक क्षण में विराट स्वरूप धारण कर सकता है और वो ऐसा स्वरूप कब धारण करेगा कोई कह नहीं सकता। इसलिए चतुर मनुष्यों को चाहिए कि वे छोटे दिखने वाले निर्दोष बादल की अवगणना न करें, बल्कि उसे चिन्ह रूप माने और उसका योग्य उपचार करें। बापू कहते हैं कि ये हड़ताल अंगूठे के आकार की एक बदली है, लेकिन उसमें बिजली गिराने की शक्ति पैदा हो सकती है। मैं तो कहता हूं कि ऐसी शक्ति पैदा हो। मुझे वर्तमान ब्रिटिश राज्य प्रणाली के प्रति न तो मान है न प्रेम ही। मैं उसे शैतान की कृति का नाम दे चुका हूं। मैं निरंतर इस प्रणाली के नाश की इच्छा किया करता हूं। वो नाश भारतवर्ष के नवयुवक और नवयुवतियों द्वारा हो, ये सब तरह से इष्ट है। इस नाशक शक्ति को प्राप्त करना विद्यार्थियों के हाथ की बात है। अगर वे अपने भीतर उत्पन्न शक्ति का संग्रह करें, तो आज वे उस शक्ति को पैदा कर सकते हैं। बापू कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि विद्यार्थी अपनी शुरू की हुई हड़ताल सफल करें। अगर उन्होंने शुरुआत ही न की होती तो उन्हें कोई कुछ भी न कहता। शुरुआत करने के बाद अगर वे हिम्मत हार कर बैठ जाएं, तो अवश्य ही निंदा के पात्र बनेंगे और अपने आप को तथा देश को हानि पहुंचाएंगे। हड़ताल का अधिक से अधिक कटु परिणाम तो इतना हो सकता है कि प्रिंसिपल साहब विद्यार्थियों का हमेशा के लिए या लंबे समय के लिए बहिष्कार करें अथवा उन्हें फिर से भर्ती करने के लिए कोई दंड निश्चित कर दें। इन दोनों चीजों को विद्यार्थियों को हर्ष पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। रण क्षेत्र में कूदने के बाद वीर पुरुष कभी पीछे पैर हटाता ही नहीं है, इसी तरह ये विद्यार्थी भी अब पीछे नहीं हट सकते। हाँ, विद्यार्थियों को विनय का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। वे प्राचार्य के या अध्यापकों के संबंध में एक भी कड़वे शब्द का उच्चार न करें। कठोर शब्द बोलने वाले का नुकसान करते हैं, जिनके लिए कहे जाते हैं उनका नहीं। विद्यार्थियों को अपने वचन का पालन करके और कठोर काम करके बतलाना है, जरूर उसका असर होगा। उसमें से इस राज्य प्रणाली का नाश करने की शक्ति पैदा होगी, ऐसा हुए बिना रह नहीं सकता। हमारे युवक और युवतियां चीनी विद्यार्थियों के उदाहरण को याद रखें। उनमें के एक दो नहीं बल्कि 50,000 विद्यार्थी गांवों में फैल गए और थोड़े से समय में उन्होंने छोटे बड़े सबको आवश्यक अक्षर ज्ञान देकर तथा दूसरी बातों का ज्ञान देकर तैयार कर लिया। अगर विद्यार्थी स्वराज्य यज्ञ में बड़ी तादाद में अपना हाथ बंटाना चाहते हों, तो उन्हें चीनी विद्यार्थियों के समान कुछ करके बतलाना चाहिए। बापू कहते हैं कि जैसा मैं समझ सका हूँ उसके अनुसार तो विद्यार्थी शांतिमय युद्ध में आहुति देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मेरे समझने में भूल हो गई हो तो भी पहले वाली बात तो आत्मबल और पशुबल दोनों प्रकार के युद्ध पर लागू होती है। अगर हम गोला बारूद से लड़ना चाहें तो भी संयम का पालन करना पड़ेगा, भाप का संग्रह करना पड़ेगा। एक खास हद तक तो दोनों का रास्ता एक ही है। इस्लाम में खलीफाओं ने, ईसाई धर्म में क्रुसेडरों ने और राजनीति में क्रॉमवेल तथा उसके योद्धाओं ने भोग विलास का अपूर्व त्याग किया था। आधुनिक उदाहरण लें तो लेनिन, सत्यान सेन आदि में सादगी, दुखादी की सहन शक्ति, भोग त्याग एक निष्ठा और सतत जागृति का योगियों को भी शर्माने वाला नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। उनके अनुयायियों ने भी वफादारी और नियम पालन का वैसा ही उज्जवल उदाहरण पेश किया है। बापू कहते हैं कि हमारे निस्तार का भी यही उपाय है। हमारा त्याग आज भी कोई बड़ा त्याग नहीं है, वो नगण्य है। अनुशासन की हमारी शक्ति थोड़ी है, हमारी सादगी अपेक्षाकृत कम है, हमारी निष्ठा नहीं के बराबर ही कही जा सकती।

है और दृढ़ता तथा एकाग्रता दर्शन तो प्रारंभ काल में ही होता है। इसलिए देश के नौजवान याद रखें कि उन्हें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने जो कुछ किया है उसे मैं भूला नहीं हूँ। उन्हें मुझसे स्तुति पाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। मित्र की स्तुति करने वाला व्यक्ति तो भाट बन जाता है। मित्र का काम तो कमजोरियां बताकर उनके परिमार्जन का प्रयत्न करना है। ये थे विद्यार्थी क्या करें विषय पर गांधी जी के विचार। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति रचना।

काम तो कमजोरियां बताकर उनके परिमार्जन का प्रयत्न करना है। ये थे विद्यार्थी क्या करें विषय पर गांधी जी के विचार। आइए अब सुनते हैं एक भक्ति रचना।

आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। विद्यार्थी क्या करें, विषय था गांधी चर्चा का। वाचक स्वर थे श्री चंद्रशेखर जोशी के, प्रस्तुति थी श्री अशोक कुमार की, संयोजनकर्ता थे श्री अमित सिंह।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोडा मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीईआरटी का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे

0: रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
1: जी।
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि यह नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।

0: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
1: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
0: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
1: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
0: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था।

0: कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
1: भातखंडी जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं, विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें, विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
0: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। 2 बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। उसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
1: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
0: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी बेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
4: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कक्षों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
5: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
4: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में 2 कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
5: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस

0: पटेल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
1: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। फिर क्या था? ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
2: संगीत रचना के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले आ रहे हो? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान, मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो?
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल हुआ था ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थी। सन 1911 में अष्टोत्तर शताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं, जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप

0: देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: नयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमदत्ता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे उमंग NCERT प्रायोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ज और FM 101.6 मेगा हर्ज पर सुबह के 10 बजने को है। जी हाँ, समय मिलाने स्टूडियो की घड़ी सुबह के 10 बजा रही है। समय हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नई फिल्मों से गीत। पहला गीत है आतिफ असलम की आवाज में, फिल्म का नाम है कलयुग।

0: मेरे को पूछ रहे हैं।
1: नमस्कार नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा
2: बारंबार प्रणाम।
1: और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए मोहित चौहान की आवाज में फिल्म नोटबुक से अगला गीत। गीतकार हैं कौशल किशोर, संगीतकार हैं विशाल मिश्रा।

0: रहा है जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग
2: जी हाँ अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का पहचान का और विस्तार का
2: आइए जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान
3: आकाशवाणी बीकानेर आपकी आवाज जन जन तक
4: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत कार्यक्रम में नई फिल्मों से गीत आप सुन रहे हैं लीजिए सुनिए फिल्म भूल भुलैया से के आवाज में अगला गीत

0: वहाँ के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम नई फिल्मों से मैं सुनिए अगला गीत फिल्म मर्डर 2 से। सईद कादरी ने गीत को बोल दिए हैं।

0: वहां के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम नई फिल्मों से मैं सुनिए अगला गीत फिल्म मर्डर 2 से। सईद कादरी ने गीत को बोल दिए हैं, हर्षित सक्सेना की है आवाज़ और इस गीत को संगीत भी दिया है हर्षित सक्सेना ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत और नई फिल्मों से गीत आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए ओ माय गॉड 2 फिल्म से हंसराज रघुवंशी की आवाज में अगला गीत।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे बाय
0: दीपा।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आकाशवाणी बीकानेर की ढोला मारू चैनल से लीजिए सुनिए फिल्म यस बॉस से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत जिसे संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उदित नारायण की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे संगीत दिया है शिव हरी ने और फिल्म का नाम है डर।

गीत था फिल्म डर से, संगीत शिवहरी का था। आनंद बख्शी ने गीत को बोल दिए थे, आवाज उदित नारायण की थी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए फिल्म अंजाम से पूर्णिमा और साथियों की आवाज में लिखा गीत। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं आनंद मिलन।

ये गीत आपने फिल्म अंजाम से सुना। लीजिए सुनिए अनु मलिक के संगीत से सजा मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, जिसे आवाजें दी है उदित नारायण और शंकर महादेवन ने। फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम।

अकेले हम अकेले तुम के इस गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज़ पर सुबह के 11 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत के भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। फिल्म का नाम है पूर्णिमा।

सुना गीता दत्त की आवाज में फिल्म आर पार से गीत। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये फिल्म चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म श्री 420 से। आवाजें हैं आशा भोसले और मन्ना डे की। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चुपके चुपके से गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था एसटी बर्मन ने। आज श्रावण मास का प्रथम दिन है और बीकानेर में श्रावण मास को बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और हमारे संगीत में भी आज के में श्रावण मास को महत्वपूर्ण जगह दी गई है। तो भूले मिश्र गीत में कुछ गीत आज सावन से जुड़े। तो कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में फिल्म महबूबा से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी।

खूबसूरत संगीत सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और मुकेश की। इस खूबसूरत संगीत की रचना की थी आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये फिल्म मरु चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भूलो बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जुनून से। आवाज है आशा भोसले की।

गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जब याद किसी की आती है से गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलो मारो चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, यशोदास की आवाज में फिल्म टूटे खिलौने से। इस गीत को लिखा है कैफ

आत्मसुना फिल्म बावर्ची से गीत आवाजें थी मन्ना डे की। इस गीत को लिखा था कैफी आजमी ने, संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। आकाशवाणी बिखरने का ये ढोला मारू चैनल है, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म पाकिजा से आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आज आपने सुने भूले बिसरे गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोल मारू चैनल है। मेरी लोग 215.05 मीटर अर्थात 1355 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.9

0: दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्राम विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट के सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी निज सीट पे विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 226 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पोबी लालचंद जुबा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल के हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जुबा ने कहा कि 1966 में अपने स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031, जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

12:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 12:40 पर आप सुनेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा महिला जगत।

दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। हमारी सांध्यकालीन सभा में 5:05 पर युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।

6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही फिल्म से गीत। 7:00 ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत और 7:45 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत।

7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिलीज किया जाएगा और 8:15 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का।

मात्र 8:30 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक ही संगीतकार के गीत रात्रि 9:30 पर।

आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनिए पंकज उदास की आवाज में गीत।

0: आकाशवाणी बिकल का ये ठुला मारो चैनल है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज में।
1: मेरे वालिद रोजो शब खुदा की याद में रहते थे, कभी माज में आते तो फरमाते बेटा इश्क करो, इश्क ही इस कारखाने में मुतसर्रफ है, अगर इश्क ना होता तो नज़्म कुल कायम नहीं रह सकता था। बेश जिंदगी बबाल है, इश्क में जी की बाजी लगा देना कमाल है, इश्क बनाता है, इश्क ही कुर्बान कर देता है, दुनिया में जो कुछ है इश्क का जरूर है, आग इश्क की सोजिश है, पानी इश्क की रफ्तार है, खाक इश्क का करार है, हवा उसका इस्तरार है, मौत इश्क की मस्ती, जिंदगी इश्क की होशियारी है, रात इश्क का ख्वाब और दिन इश्क की बेदारी है, नेकी इश्क का कुर्ब है, गुनाह इश्क की दूरी है, जन्नत इश्क का शौक है, तौज़ इश्क का शौक है, काम मकसद को इश्क बन पहुंचा, आरज़ू इश्क मुंतहा है इश्क।

इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। 12:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म गदर 2 से गीत।

आपने सुना मोहित चौहान की आवाज में फिल्म एक पहेली लीला से गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आशिकी 2 से। आवाज है अरिजीत सिंह की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारु चैनल है। एक बजने को ही अब आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में नए अकादमिक भवन, कुलगुरु आवास और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का ऑनलाइन अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने टीबी मुक्त और नशा मुक्त राजस्थान के लिए जन भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। श्री बागड़े ने जनजातीय समाज की जल, जंगल और जमीन संरक्षण की परंपराओं पर अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता जताई। अजमेर में एनेस्थीजियोलॉजिस्ट का सम्मेलन आइसाकॉन राजस्थान 2026 कल से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले आज प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाएं रखी गई हैं। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए एनेस्थीजियोलॉजिस्ट, चिकित्सा शिक्षक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। आयोजन अध्यक्ष डॉ. अरविंद खरे ने बताया कि मुख्य सम्मेलन कल और परसों पुष्कर में होगा। इसमें एनेस्थीजिया, क्रिटिकल केयर, रोगी सुरक्षा और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से जुड़े वैज्ञानिक सत्र, व्याख्यान और पैनल चर्चाएं होंगी। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के अवसर पर राखी और मिठाई भेजने के लिए विशेष वाटरप्रूफ डिब्बों की सुविधा शुरू की है। भरतपुर डाक मंडल के अधीक्षक आनंद सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए तैयार किए गए इन डिब्बों में भेजा गया सामान सुरक्षित रहेगा। उन्होंने बताया कि वाटरप्रूफ डिब्बे की कीमत 30 रुपए है और इसमें 500 ग्राम तक का सामान भेजा जा सकता है। इससे अधिक वजन होने पर पार्सल शुल्क लागू होगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर पानी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में बरसा। इसके अलावा डग, दानपुर, बिजौलिया और सरवर में 5-5 सेंटीमीटर बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। जयपुर विकास प्राधिकरण के रियायती पौधा वितरण अभियान के तहत अब तक 6638 छायादार और फलदार पौधे वितरित किए जा चुके हैं। जेडीए के अनुसार इस वर्ष आमजन के लिए 85,000 पौधे रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए पे फॉर प्लांट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान किया जा सकता है। पौधों का वितरण रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 12 केंद्रों पर किया जा रहा है। जेडीए ने पौधरोपण की सही तकनीक की जानकारी देने की भी व्यवस्था की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षाओं को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि कुछ अभ्यर्थी और अन्य व्यक्ति परीक्षा परिणाम से पहले बिना अधिकृत सूचना के सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य और आंकड़े साझा कर अभ्यर्थियों और आमजन में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आयोग की विश्वसनीयता प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों से केवल आयोग की अधिकृत सूचनाओं पर ही भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। राजधानी जयपुर में भारत टैक्सी सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। सहकारी मॉडल पर आधारित इस सेवा से यात्रियों को किफायती सफर की सुविधा मिलेगी। ऐप आधारित इस सेवा को दूसरी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की तुलना में 10-15% कम किराए वाला बताया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोल मारू चैनल है। दोपहर के 1:06 और 15 सेकंड हुए हैं। अब मेरे श्रोताओं का कार्यक्रम होगा मीडिया जगह।

0: दोनों स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम महिला जगत में। आज आपके साथ है आपकी दो रेडियो सखियां, मैं मीनाक्षी सोनकर
1: और मैं मनीष खमार।
0: तो बहनों, कीजिए स्वीकार
1: हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, प्रकृति का हर मौसम अपने साथ एक नया संदेश लेकर आता है, लेकिन सावन की बात ही कुछ और है। हरियाली से लहलाती धरती, रंजीन फुहारे, मिट्टी की खिली भिनी खुशबू और वातावरण में घुली शिव भक्ति, मानो प्रकृति स्वयं आनंद और उत्सव का गीत गा रही हो।
0: सावन केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि मन, विचार और जीवन को हरा भरा बनाने का भी संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे वर्षा की बूंदें सूखी धरती को नया जीवन देती है, वैसे ही सकारात्मक सोच, प्रेम और अच्छे संस्कार हमारे जीवन को नई ऊर्जा से भर देते हैं।
1: और जब बात सावन की हो तो भगवान शिव का स्मरण अपने आप हो जाता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, शुभ और मंगल। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य, सरलता, करुणा और संयम का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
0: तो बहनों, इस पावन सावन में हम भी अपने जीवन में शुभ विचारों, मधुर व्यवहार और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, क्योंकि जब मन में शिवत्व जागता है तभी जीवन में सच्चे अर्थों में शुभ और कल्याण का उदय होता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत
1: इस गीत के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे शब्द लिख जाते हैं जो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। हिंदी साहित्य में ऐसा ही एक अमर नाम है मुंशी प्रेमचंद। उनकी कहानियां केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में समाज की सच्चाइयों को इतनी सहजता और संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया कि उनके पात्र आज भी हमारे आसपास जीवित दिखाई देते हैं। किसान की पीड़ा, महिलाओं का संघर्ष, गरीब की विवशता, सामाजिक असमानता, शिक्षा का महत्व और मानवीय संवेदनाएं,

0: सब उनके साहित्य की आत्मा है।
1: 31 जुलाई को मनाई जाने वाली प्रेमचंद जयंती हमें उस महान साहित्यकार को याद करने का अवसर देती है जिन्होंने अपनी लेखनी को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया बल्कि समाज में जागरूकता और परिवर्तन का सशक्त साधन बनाया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था लेकिन साहित्य जगत में उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता था। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां, अनेक उपन्यास, नाटक और लेख लिखे। गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन जैसे उपन्यास और ईदगाह, पूस की रात, कफन, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर जैसी कहानियां आज भी पाठकों के मन को छू लेती हैं।
0: मैंने प्रेमचंद के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने महिलाओं को केवल करुणा का पात्र नहीं बनाया बल्कि उन्हें आत्मसम्मान, संघर्ष और सामाजिक चेतना के साथ प्रस्तुत किया। उनके स्त्री पात्र कठिन परिस्थितियों में भी साहस, धैर्य और मानवीय मूल्यों की मिसाल बनते हैं। उनकी रचनाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि सोच को बदलने और समाज को बेहतर बनाने की शक्ति है। उनके शब्द आज भी हमें ईमानदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हैं।
1: मृक्षी, आज जब मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में पढ़ने की आदत देखी रहे कि कम होती जा रही है, तब प्रेमचंद का साहित्य हमें किताबों की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। यदि माता पिता बच्चों को बचपन से ही अच्छी कहानियां पढ़ने की आदत डालें तो उनमें संवेदनशीलता, नैतिकता और जो मानवीय मूल्यों का विकास है ना, वो स्वाभाविक रूप से होता है।
0: बिल्कुल मनोज, सही कह रही हो। और कहते हैं साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं होता, वह समाज का दर्पण भी होता है। और प्रेमचंद का साहित्य हमें अपने समाज को समझने, दूसरों के दुख को महसूस करने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। आइए प्रेमचंद जयंती पर हम संकल्प लें कि स्वयं भी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे और अपने बच्चों को भी पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि अच्छी किताबें केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती है।
1: पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और साहित्य की रोशनी में अपने जीवन को समृद्ध बनाते रहिए।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: वहाँ के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: बहनों, हमारी हमेशा यही आशा होती है कि हमारे इर्द गिर्द समाज में सब अच्छे से चलता रहे, सबका जीवन खुशहाल हो, पर ना चाहते हुए भी आज भी कई सामाजिक कुरीतियां हैं जिन्हें घटते देख हमारा मन विचलित हो उठता है। लगता है कि हमें इन कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए आपको एक वार्ता सुनाते हैं। हमारी वार्ता का विषय है सामाजिक कुरीति।

0: परेशानियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका। और हमारी आज की वार्ताकार हैं कल्पना श्रीवास्तव।
1: सामाजिक कुरीतियों के निवारण में महिलाओं का योगदान। हमारे समाज में महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम भूमिका, चाहे वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, सास एवं अन्य कोई भी हो, उन सबको निभाने में निपुण होते हैं के बाद भी उनकी योग्यता कम मानी जाती है। भारतीय संस्कृति में नारी का दर्जा बहुत ऊंचा है, परंतु जैसे जैसे हम वैदिक काल में मध्य और आधुनिक काल की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे भारत में निम्न होती महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। सरकार द्वारा जागरूकता फैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी से ज्यादा जटिल होती है। इन सभी परिस्थितियों से लड़ते लड़ते महिलाओं में समाज में फैली कुरीतियों से लड़ने की हिम्मत जागृत हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी। परंपराओं और मान्यताओं के चलते महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। महिलाएं इन कुरीतियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को मानने के लिए बाध्य थीं। इन मान्यताओं में प्रमुख थी बाल विवाह, जौहर, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पति की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाना,

संकटों से लड़ने की हिम्मत जागृत हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न थी। परंपराओं और मान्यताओं के चलते महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था। महिला इन कुरीतियों, मान्यताओं और अंधविश्वासों को मानने के लिए बाध्य थी। इन मान्यताओं में प्रमुख थी बाल विवाह, जौहर, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पति की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाना, साध्वी वाला जीवन व्यतीत करना तथा अनेक कष्ट सहना इत्यादि। उस समय निम्न महिलाओं के कार्य भी उल्लेखनीय है, जिसमें पंडित रामाबाई सरस्वती, सरला देवी चौधरानी, मुक्ताबाई एवं ताराबाई शिंदे, सरोजिनी नायडू आदि महिलाओं के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपना भरपूर सहयोग समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में दिया। पुणे से पंडित रामाबाई ने मुंबई महाप्रांत के विभिन्न शहरों में अनेक महिला संस्थानों की स्थापना की। इन्होंने महिलाओं के लिए, युवा विधवा स्त्रियों के लिए रोजगार और शिक्षा की दृष्टि से शारदा सदन की शुरुआत की। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की शुरुआत की। मुक्ताबाई और ताराबाई शिंदे ने निम्न जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी सुधार प्रस्तुत की। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद संभाला। उन्होंने सुधारों के खिलाफत का मुद्दा उठाकर कूर रोलेट एक्ट एवं सत्याग्रह पर अभियान चलाए। भारत की कई बुद्धिजीवी मेघावी महिलाओं ने बड़े बड़े समाज सुधारकों और आम जनता के साथ मिलकर महिलाओं के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही स्थानीय महिलाओं के साथ शिक्षा, जीवकोपार्जन, नीति निर्माण पर जोर दिया। इन महिलाओं के अतिरिक्त विदेशी मूल की महिलाओं में जैसे एनी बेसेंट और सिस्टर निवेदिता ने भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं ने गांव के स्तर पर महिला आत्मरक्षा समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा महिलाओं के साथ हो रही हिंसा, मारपीट का विरोध किया जा सके और पितृसत्ता समाज के चुनौती दी जा सके। इसके बाद तेलगान आंदोलन में भी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सक्रिय रहीं। मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन में भी महिलाओं ने भाग लिया और वह थाली वेलन लेकर सड़कों पर उतरी। पीटी उषा, जो कि भारत की स्टार एथलीट है, उड़ान परी के मशहूर नाम से जानी जाती है, यह राज्यसभा की सदस्य भी रही है। इन्होंने भारतीय महिलाओं को खेल जगत में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। यह महिलाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है और पीटी उषा आज केरल में अपना एक एथलीट स्कूल चलाती हैं। डॉक्टर किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, साथ ही वे सामाजिक कार्यकर्ता, भूतपूर्व टेनिस खिलाड़ी एवं राजनेता हैं, साथ ही एक महान लेखक भी हैं। वर्तमान में पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। 1979 में इन्होंने राष्ट्रपति का पुलिस पदक जीता। इन्होंने पश्चिम दिल्ली में कार्य करते हुए महिलाओं की काफी सहायता करी तथा महिलाओं के साथ होने वाले अनेक प्रकार के अपराधों में कमी लाई तथा इन्होंने डीएसपी के रूप में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान चलाया, जो कि नवज्योति दिल्ली पुलिस फाउंडेशन में विकसित हुआ। सावित्रीबाई फुले पहली स्त्री शिक्षिका थी जिन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के लिए कई कार्य किए। इन्होंने स्त्री शिक्षा को मजबूत किया और पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला। वह एक दृढ़ संकल्पी शिक्षिका के साथ साथ समाज सुधारक भी थी और व्यक्तिगत स्तर पर कावियत्री भी। इन्होंने पूना में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी खोला। वह शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के विकास की समर्थन की रही। इतना ही नहीं, इन्होंने यौन शोषण के गर्भवती होने वाली बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए प्रसूति गृह खोला, जिसका नाम बाल हत्या प्रतिबंधक गृह से रखा गया। इंदिरा गांधी, यह भी भारत की एक जानी मानी पहली प्रधानमंत्री थी। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। इसी प्रकार कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था। इससे कृष्णा पूनिया राजस्थान में विधायक और पूर्व ओलंपियन रही हैं। वे एक अच्छी राजनीतिक भी हैं। इन्होंने राजनीतिक महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और ये हमारे देश में इतनी महिलाओं के योगदान के बाद भी कई प्रकार की कुरीतियां कम हुई हैं, पर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। आज भी समाज में हरेक हिस्से पर साफ साफ दिखती है कि दहेज, बाल प्रथा, बाल विवाह, बालिकाओं का शोषण होता हुआ, इन सबको समाप्त करने के लिए कई प्रकार के कानून भी बनाए गए हैं। आज भी हमारे देश में दहेज प्रथा में बखूबी जड़ जमा रखी है। इस प्रथा के कुपरिणाम स्वरूप कई बहुएं दहेज की बलि देवी पर चढ़ जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कठोर कानून ही ना बनाए जाएं, बल्कि इन्हें लागू भी किया जाना चाहिए, ताकि इस प्रकार के कार्य करने वाले को दंडित किया जा सके। इसे रोकने के लिए स्वयं लड़कियों और महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। बाल विवाह जैसी भयंकर कुरीति भी है, जो कि अब शहर में तो कम हो गई लेकिन गांव में आज भी जीवित है। इसमें भी एक एक दंडीय अपराध है और आज गांवों में और कई जातियों में बाल विवाह को प्रथा प्रचलित है। इसे रोकने के लिए भी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा और लड़कियों को भी इसमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त और भी सामाजिक कुरीतियां जैसे मृत्यु भोज, कन्या भ्रूण हत्या, प्रदा प्रथा जैसी रूढ़ियां आज भी हमारे समाज में काले धब्बे की तरह हैं। इन सब बुराइयों को

0: दूर करने के लिए हम महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हम दूसरों की सोच नहीं बदल पाएंगे और इनका स्वाभिमान हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। साथ ही महिलाओं को भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए ताकि अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, भ्रूण हत्या और अन्य सामाजिक कुरीतियों को सहन न करें बल्कि एकजुट होकर उनके विरुद्ध आवाज उठाएं। भारत में लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं करती हैं। आज भी महिलाओं में शिक्षा की कमी है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस संदर्भ में कई महिला संगठन गांव जा जाकर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि प्रत्येक महिला का अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। विद्रम यंग के द्वारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक आदमी को ही शिक्षित कर रहे हैं, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। इस प्रकार समाज के विकास के लिए लड़कियों को शिक्षित होना जरूरी है और इसमें महिलाएं यानी कि समाज सेवी संगठन, आंगनबाड़ी आदि संस्थाओं का भी योगदान है। समाज में फैली कई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। इस संबंध में महिलाओं और उनके संगठन गाँव जा जाकर महिलाओं को इस कानूनों की अहमियत समझाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के द्वारा गांव की महिलाओं को जागरूक करती हैं, जिससे कि महिला साक्षरता के प्रतिशत बढ़ सके। इसके अतिरिक्त महिलाएं तथा महिला समाज सेवी संस्थाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्य कुरूतियां जैसे कि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या आदि के बारे में गांव जा जाकर सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और उन्हें रोकने के लिए बनाए गए कानून के बारे में भी बताती हैं। जैसे कि कई जिलों में डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में महिला सरपंच खुले में शौच मुक्त जिला बनाने में प्रयासरत है। इसके अतिरिक्त महिलाएं की मांग पर ही कई जगह शराबबंदी कानून लागू हुआ, जिसकी वजह से महिलाओं पर हो रही हिंसाएं कम हुई। इसके साथ हम महिलाओं द्वारा अपने साथ हो रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप एक अभियान चलाया दुष्कर्म के विरुद्ध फोरम से लेकर महिला दमन विरोधी फोरम तक में विभिन्न मुद्दों को उठाया, जैसे कि यौन उत्पीड़न, दहेज संबंधी हिंसा एवं भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा आदि कई समस्याओं का भी निदान किया जाता है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों स्तरों पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कई संगठन बनाए, जैसे कि महिला स्वयंसेवी समूह, महिला विकास अध्ययन केंद्र, भारतीय महिला सम्मेलन की अनेक शाखाएं, महिला राष्ट्रीय आयोग जो कि समय समय पर महिलाओं की समस्या का समाधान करती हैं। इसके अतिरिक्त और भी समस्याओं के महिला ने आवाज उठाई, जैसे शाहबानो केस की तरह ही शायर ने कहा कि 3 बार तलाक कहकर रिश्ता तोड़ देना गैर संवैधानिक है और इस पर मुझे न्याय मिला और अब सरकार इस पर रोक लगा दी गई है। अंत में मैं यही कहूंगी कि जिस प्रकार इन महिलाओं ने हम सबके लिए योगदान दिया है, उसी प्रकार हम सबको भी इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर आगे आना चाहिए। साथ ही हमें दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, अंधविश्वास जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इन सब कुरीतियों को दूर करने के 3 उपाय हैं, शिक्षा, जागरूकता और स्वावलंबन। महिलाएं स्वयं इतनी आत्मनिर्भर बन जाएं कि उन्हें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़े। महिलाओं को स्वयं सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बचाव बनाने के लिए सशक्त होना पड़ेगा। वित्तीय स्वतंत्रता एक महिला को दृढ़ बनाती है। आर्थिक रूप से सशक्त महिला सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक कवच है। आज भी हमारे समाज में, खासकर गांव में, कई तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं। इनको हम महिला ही दूर कर सकती हैं और ये तब संभव है जब देश की प्रत्येक महिला शिक्षित हो और उसे कानून की जानकारी हो तथा अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की क्षमता रखती हो।
1: तो साथियों, अभी हमने सुनी कार्यक्रम में वार्ता का विषय था सामाजिक कुरीतियां दूर करने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव और अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत।

0: पहुंच रहे हम।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित।

0: यह मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को यह गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सखी, कहा जाता है शब्दों में दुनिया बदलने की ताकत होती है। समय बदला, साधन बदले और अब अभिव्यक्ति का माध्यम भी बदल चुका है। कलम की ताकत कभी कागज तक सीमित थी, कभी विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अखबार, रेडियो, टेलीविजन ही प्रमुख माध्यम थे। लेकिन आज एक छोटा सा स्मार्टफोन और इंटरनेट किसी भी व्यक्ति को अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचाने की क्षमता देता है।
1: मनोज, एकदम सही बात कही है तुम।

0: आज हर व्यक्ति न केवल जानकारी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका सृजनकर्ता भी बन सकता है। चाहे किसान अपनी खेती के अनुभव साझा करे, कोई गृहिणी अपने पारंपरिक व्यंजन बताए, युवा अपनी प्रतिभा दिखाए या कोई छात्र अपनी सीख दूसरों तक पहुंचाए, डिजिटल मंच हर किसी को अपनी पहचान बनाने का अवसर देता है। हमारी प्रतिभा, हमारे विचार दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं।
1: यही है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की शक्ति। लेकिन सखियों, यह भी उतना ही सत्य है कि प्रभावी डिजिटल कंटेंट केवल आकर्षक वीडियोस या सुंदर तस्वीरों से नहीं बनता। और अगर आप भी डिजिटल कंटेंट बनाना चाहती हैं, तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर प्रभावी व जिम्मेदार डिजिटल कंटेंट बना सकती हैं।
0: इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहले तय करें कि आपका कंटेंट किस विषय पर होगा, जैसे शिक्षा, खेती, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प, पाक कला, महिला सशक्तिकरण या फिर कोई अन्य विषय।
1: सही और विश्वसनीय जानकारी दें। कोई भी जानकारी साझा करने से पहले आप उसकी सत्यता जरूर जांच लें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई एक गलत जानकारी समाज में भ्रम पैदा कर सकती है। साथ ही ऐसी भाषा चुनें जो हर आयु वर्ग का व्यक्ति आसानी से समझ सके।
0: इसके साथ ही अच्छी ऑडियो और वीडियो गुणवत्ता रखें। रिकॉर्डिंग किसी शांत स्थान पर करें, वहां पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और कैमरे को स्थिर रखें। और साथ ही नियमित रूप से उपयोगी और सकारात्मक कंटेंट साझा करें ताकि दर्शकों का विश्वास बना रहे। और एक खास बात, शिष्ट व्यवहार बनाए रखें, टिप्पणियों का सम्मान पूर्वक उत्तर दें और सोशल मीडिया पर सकारात्मक संवाद को बढ़ावा दें।
1: और साथ ही सखियों, डिजिटल सुरक्षा का भी ध्यान रखें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी अनावश्यक रूप से साझा ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें और संदिग्ध जो लिंक्स हैं उनको क्लिक करने से बचें। सखियों, डिजिटल माध्यम तभी सार्थक है जब उसका उपयोग ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव के लिए किया जाए। तो आइए जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बने और ऐसा कंटेंट तैयार करें जो समाज के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक हो।

0: सखियों, परिवर्तन जीवन का नियम है। जो समय के साथ बदलना सीखता है वही आगे बढ़ता है। प्रकृति हमें हर ऋतु में यही संदेश तो देती है कि बदलाव को स्वीकार करना ही जीवन की सुंदरता है। बदलाव से घबराएं नहीं, उसे अवसर बनाएं, क्योंकि हर नया सवेरा नई संभावनाएं लेकर आता है।
1: अरे वाह मनोज, बहुत ही खूबसूरत बात कही। और अब जब बात बदलाव की हो चली है तो सखियों आइए बात करते हैं मौसम में हुए इस बदलाव और उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में। सखियों, वर्षा ऋतु का आगमन जहां धरती पर हरियाली और नई ऊर्जा लेकर आता है, वहीं बदलते मौसम के कारण कई संक्रामक रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इस मौसम का आनंद लेने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना और आवश्यक सावधानियां अपनाना भी उतना ही जरूरी है।
0: जी हाँ बहनों, मानसून अपने साथ हरियाली और ठंडक तो लेकर आता ही है, उसके साथ आती है नमी, गंदा पानी और मच्छर और उनसे होने वाली सैकड़ों संक्रामक रोग। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हैजा, वायरल बुखार, सर्दी, जुखाम, त्वचा के फंगल इन्फेक्शंस, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इन रोगों से बचने हेतु पूरी तरह से सजग रहें और सावधानी बरतें।
1: तो जैसे हमेशा उबला हुआ स्वच्छ पानी पिए, भोजन को ढककर रखें और हमेशा ताजा भोजन ही खाएं, बासी खाना या ठंडा खाना खाने से बचें।
0: इसके अलावा अभी जैसे बारिश का मौसम है तो घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, या अगर घर में कुछ खुला पड़ा है, कोई भी जैसे कूलर वगैरह है वो खुले पड़े हैं या फिर कबाड़ इकट्ठा है, तो कोशिश करें कि उनमें पानी जमा ना हो, क्योंकि ये जमा गंदा पानी मच्छरों को लौटा देता है जो इन आधे से ज्यादा संक्रामक रोगों के लिए मुख्य कारण है। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी बांह के कपड़े खुद भी पहने और बच्चों को भी पहनाएं,
1: और हमेशा हाथों को साबुन से धोएं, बारिश में भीगने के बाद सूखे कपड़े पहने और शरीर को अच्छे से सुखाएं। और बहनों, अगर कभी तेज बुखार, लगातार उल्टी, दस्त या शरीर पर चकते दिखाई दे तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
0: सखियों, आप मानसून का आनंद तभी ले पाएंगे जब आप और आपका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। और फिलहाल के लिए लुफ्त उठाएं इस खूबसूरत से गीत का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप अपनी अपनी सीट पे विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।

0: చెప్పాలి. చెప్పాల్సింది పోయింది రాబా మా పెళ్ళి ఇంటి ద్రోహం నాకైతే మా మీ సభాపతి లోపల కథంకి గురి మాకు
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एरिया ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonarea.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने न्यूज पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सिर में चोट आई।
2: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई @2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें डाउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज करें जस्ट टू क्रिएट chaos।
1: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है।
3: देखो झारखंड के अंदर हजारों छात्र घर में बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
1: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के रणसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल एसटीएफ ने जैश के संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है।

के आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आईजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूर्वे लालचंद जोवा ने कहा कि आकाशवाणी आईजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आईजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आईजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरल, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे

0: मत से इस स्टेशन ने निज भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आजम मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरल, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और नारायण जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना की 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 268,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 800,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गांवों को प्रभावित किया है। ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठुला मारू चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म तीन देवियां से गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है HT बर्मन ने।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हसीना मान जाएगी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मुकेश की आवाज़ में।

आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कभी कभी से गीत। इस गीत को लिखा था शाहिद लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया था खयाम ने। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म किस्मत से, और इस गीत को संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के 3 बजने को है। हमारे आज के प्रसारण समाप्त होते हैं। संध्याकालीन सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाजत।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का विकास किया जाएगा। इन प्रणालियों की न्यूनतम भंडारण क्षमता 2 घंटे होगी और कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता 10,000 मेगावाट होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज है, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सीमा संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। लोकसभा ने आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने विधेयक पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच ये विधेयक पारित हो गया। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में कल देर रात 4 मंजिला इमारत ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग, पुलिस और नगर निगम बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने मृतकों के परिजनों के लिए 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने

0: प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के सैकड़ों विस्थापित लोगों ने पाकिस्तानी सेना द्वारा कब्जे वाले क्षेत्र में किए जा रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन पीओजेके के विस्थापित परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन एसओएस इंटरनेशनल ने आयोजित किया था। प्रदर्शनकारियों पाकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ नारे लगाते हुए पीओजेके को भारत में शामिल करने की मांग कर रहे थे। एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजीव चुनी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र के लोगों का दमन और शोषण कर रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सोरम क्षेत्र में एक कोयला खदान में मीथेन गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। शक्तिशाली विस्फोट के कारण खदान का बड़ा हिस्सा ढह गया और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय मीडिया ने प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हवाले से बताया है कि मलबे में फंसे खनिकों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा में पुरुषों के 110 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने पर लवलीत सिंह को बधाई दी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में प्रीति ने जाम्बिया की कैथरीन मापे को 5-0 से पराजित किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार श्रोताओ, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त भवानी। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे। जरा सोचिए, अगर हर दिन बिल्कुल एक जैसा हो, वही सुबह, वही काम, वही लोग और वही मौसम, तो क्या जिंदगी उतनी ही दिलचस्प होगी? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि इसमें हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। यानी आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सुनने में तो छोटा मोटा लगेगा, लेकिन ये हमारी जिंदगी का एक सच बन चुका है। वो है परिवर्तन ही स्थाई है। ये बात पहली बार सुनने में तो थोड़ी अजीब लगेगी कि मतलब परिवर्तन होता है तो वो स्थाई कैसे हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दुनिया में एक चीज है जो कभी नहीं रुकती, वो है बदलाव। दोस्तों, सुबह के बाद दोपहर आती है, फिर शाम और फिर रात। मौसम बदलते हैं, पेड़ पर नए पत्ते आते हैं, फिर वे सूख कर गिर जाते हैं। बच्चा बड़ा होकर युवा बनता है और फिर उम्र के साथ साथ बदलता जाता है। यानी प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि बदलाव जीवन का नियम है। लेकिन इंसान अक्सर बदलाव से डरता है। नई नौकरी, नया शहर, नई पढ़ाई और नई जिम्मेदारी। शुरुआत में मन थोड़ा घबराता जरूर है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी पुरानी आदतों से जो लगाव होता है। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर बीज ये सोच ले कि मुझे मिट्टी के अंदर ही रहना है, बाहर निकलकर पौधा बनना ही नहीं है, तो क्या वह एक विशाल पेड़ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे अंधेरे से बाहर आना होगा, धूप और बारिश का सामना करना होगा, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है दोस्तों। दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं तब लगता है कि बस पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर मजे हैं। कॉलेज पहुंचते हैं तो नई चुनौतियां सामने आती हैं, फिर नौकरी, परिवार और उनकी जिम्मेदारियां। हर पड़ाव

पर जीवन हमें बदलाव सिखाता है और जो व्यक्ति समय के साथ खुद को बदलना सीख लेता है ना दोस्तों, वही आगे बढ़ता है। एक समय था जब लोग चिट्ठियां लिखकर हालचाल पूछते थे, फिर टेलीफोन आए और अब मोबाइल। आज तकनीकी ने बातचीत का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अगर समाज बदलाव को स्वीकार ना करता तो शायद आज हम इतनी सुविधाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते। इसीलिए दोस्तों बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बदलाव अच्छा ही हो। हमें समझदारी से यह तय करना चाहिए कि कौन सा परिवर्तन अपनाना चाहिए और कौन सा नहीं। अगर कोई बदलाव हमें बेहतर इंसान बना रहा है, नई सीख देता है और समाज के लिए अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित करता है तो वह हमें अपनाना चाहिए। और अगर जो हमें मतलब नई सीख नहीं देता, हमें गलत मार्ग पर लेकर जाता है, वो बदलाव हमें नहीं अपनाना चाहिए। अब एक छोटी सी बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि आप रोज कहते हैं कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आज से ही करनी होगी। परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से भी आता है। जैसे रोज पढ़ना, समय पर काम करना, बड़ों का सम्मान करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और हर दिन कुछ नया सीखना। धीरे धीरे यही छोटी आदतें हमारी पहचान बन जाती है। तो दोस्तों कभी कभी जीवन में ऐसे बदलाव भी आते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। किसी अपने का दूर चले जाना, काम में असफलता या किसी योजना का पूरी तरह ना होना, ऐसी समय में मन दुखी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मुश्किलों के बाद अच्छे दिन भी आ ही जाते हैं। इसीलिए बदलाव से घबराइए मत, उसे समझिए, उसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। आज दुनिया की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है दोस्तों कि हर दिन कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि हम भी अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। लेकिन बदलाव के इस दौर में हमें अपनी अच्छाइयों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, दया और सम्मान, और साथ ही हमारे संस्कार। ये ऐसे मूल्य है जिन्हें समय बदल सकता है, लेकिन उनकी महत्वता कभी नहीं बदल सकती। दोस्तों परिवर्तन का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं, परिवर्तन का मतलब है अपनी अच्छाइयों को साथ लेकर चलना। और दोस्तों कभी कभी अगर बदलाव में हिचकिचाहट हो रही हो, कभी कोई काम करने में दिक्कत हो रही हो, तो आप मेरी तरह गाने सुनिए, उससे माइंड फ्रेश होता है। और थोड़ी बहुत मटर पिश्ती तो हमें करनी ही चाहिए लाइफ में। तो सुनते हैं एक गीत।

0: दोस्तों, अभी हमने बात की कि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समय बदलता है, मौसम बदलते हैं, तकनीकी भी बदलती है और हम भी हर दिन कुछ नया सीखते हैं। और इसी तो क्यों ना अब हम इस बदलाव को थोड़ा मजेदार बनाएं। आइए, अब हम समय आ गया है हमारी कुछ सेगमेंट का। देखते हैं कि आज की बातचीत में आपने कितना ध्यान दिया। घबराइए मत, ये कोई परीक्षा नहीं बल्कि सीखने और मुस्कुराने का एक छोटा सा जरिया है। तो क्या तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान का बदलाव यानी क्विज स्पेशल। तो सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है वो है, पंखुड़ी पोर्टल एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिति 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो दोस्तों, इसके आंसर आपको कार्यक्रम के अंत में जरूर मिलेंगे। तब तक आप सोच के रखिए।
1: ये देख कैसे?
2: Happy birthday, bye.
1: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर।
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: I know ma।
5: RBI कहता है,
7: भरोसे की शुरुआत बनो फाइनेंस।

0: हमारा व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक।
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का।

0: जन जन तक।
1: दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमारे वैज्ञानिक भी यह सोचते कि जो है वही ठीक है, नई कोशिश की क्या जरूरत, तो क्या आज भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतनी बड़ी पहचान बना पाता? शायद नहीं। हर नई उड़ान, हर नया प्रयोग और हर नई खोज बदलाव को अपनाने का ही एक परिणाम है दोस्तों। और इसी बदलाव की कहानी हम लेकर चलते हैं भारत के एक ऐसे स्थान पर जहां से देश के कई सपनों ने आसमान की ओर उड़ान भरी। हर जगह का उस जगह का नाम जो है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दोस्तों जब भी किसी रॉकेट के प्रक्षेपण की खबर आती है तो टीवी पर एक लंबा सा रॉकेट दिखाई देता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है 10, 9, 8 और फिर तेज आवाज के साथ रॉकेट आसमान की ओर बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह उड़ान कहां से शुरू होती है? आइए आज इसी रोचक सफर पर चलते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे अंग्रेजी में सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कहा जाता है, भारत का प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। यह आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी के किनारे एक द्वीप जैसा क्षेत्र है दोस्तों। यह स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि यहां से रॉकेट समुद्र की ओर सुरक्षित दिशा में छोड़ा जा सकता है। यदि उड़ान के दौरान कोई भी हिस्सा अलग हो जाता है तो वह समुद्र में गिरता है, जिससे लोगों की सुरक्षा भी बनी रहती है। दोस्तों एक केंद्र का नाम भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में रखा गया था। डॉक्टर सतीश धवन केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे दोस्तों, बल्कि ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक विशाल रॉकेट तैयार है, सैकड़ों वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने अपने कंप्यूटर पर नजरें टिकाए हुए हैं, हर छोटी सी जानकारी पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा असर डालती है। जब सब कुछ ठीक होता है तब शुरू होती है उल्टी गिनती और फिर कुछ ही सेकंड में हजारों टन शक्ति के साथ रॉकेट पृथ्वी से ऊपर उठता है। यह सिर्फ मशीन की उड़ान नहीं दोस्तों, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की भी उड़ान होती है। दोस्तों इसी केंद्र से भारत ने कई महत्वपूर्ण मशीनों की शुरुआत भी की है, चाहे मौसम की जानकारी देने वाला उपग्रह हो, संचार को बेहतर बनाने का उपग्रह हो या फिर चंद्रमा और मंगल की दिशा में बढ़ते कदम, इन सबके पीछे केंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम आज दुनिया में अपनी सादगी, कम लागत और बेहतरीन तकनीकी के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि कई देशों में उपग्रह भी भारत के अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। दोस्तों पता है कि यह हमारे वैज्ञानिक की मेहनत और विश्वास का ही परिणाम है। दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र का काम केवल रॉकेट उड़ाना नहीं होता, यहाँ नई तकनीकी का शोध होता है, रॉकेट के हर हिस्से की जांच होती है, सुरक्षा के कई स्तरों पर परीक्षण दिए जाते हैं और जब पूरी टीम को विश्वास हो जाता है कि सब कुछ सही है तभी प्रक्षेपण किया जाता है दोस्तों। आज अगर भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है तो उसका श्रेय उन हजारों लोगों को भी जाता है जिनके नाम शायद हम कभी सुनते नहीं है लेकिन जिनका काम हर मिशन को सफल बनाता है। युवाओं के लिए भी इसमें एक प्रेरणा छिपी है दोस्तों, वो ये है कि बड़े सपने देखिए, नई चीजें सीखिए, विज्ञान से जुड़िए, सवाल पूछिए, क्योंकि हर खोज की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है और कौन जाने आज का कोई छात्र कल भारत के अगले अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा हो। तो दोस्तों जब भी आप रात को आसमान की ओर देखें और चमकते हुए तारों को निहारें तो एक बात जरूर याद रखिए कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए धरती पर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां हर दिन सपनों को आकार दिया

जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ऐसा ही एक स्थान है जहां विज्ञान, मेहनत और देश का विश्वास के साथ मिलकर नई उड़ान की जाती है। इसी के साथ सुनते हैं दोस्तों एक एनर्जेटिक सॉन्ग।

0: बीकानेर के भोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हमारा शरीर तो आराम करता है लेकिन हमारा दिमाग लगातार भागता रहता है ना? एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है, कभी पढ़ाई की चिंता, कभी नौकरी की, कभी परिवार की और कभी कभी फ्यूचर की। आज की तेज रफ्तार जिंदगी को तनाव यानी स्ट्रेस लगभग हर इंसान को होता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तनाव से भागा जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन इसे संभाला जरूर जा सकता है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही नेचर और जो हमारे प्रभाव के जो तरीका है उसको चेंज करने का। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ मेडिटेशन की, यानी ध्यान की। मेडिटेशन दोस्तों आखिर है क्या? लोग बोलते हैं कि बैठकर बस सांस को अंदर बाहर करना और जब हमारा दिमाग कोई और चीजें सोच रहा हो, ये मेडिटेशन नहीं होता। बहुत से लोग को लगता है कि मेडिटेशन मतलब घंटों तक आंखें बंद करके बैठे रहना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेडिटेशन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए मन को

मेडिटेशन की, यानी ध्यान की। मेडिटेशन दोस्तों आखिर है क्या? लोग बोलते हैं कि बैठकर बस सांस को अंदर बाहर करना और जब हमारा दिमाग कोई और चीजें सोच रहा हो, ये मेडिटेशन नहीं होता। बहुत से लोग को लगता है कि मेडिटेशन मतलब घंटों तक आंखें बंद करके बैठे रहना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेडिटेशन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए मन को प्रेजेंट के जो प्रेजेंट होता है उसमें जीना, अपनी सांसों पर ध्यान देना और अपने विचारों को बिना लड़ाई किए आने जाने देना। तनाव आखिर होता क्या है? जो हम बोलते हैं कि तुम बहुत स्ट्रेस लेते हो, तो आखिर वो होता क्या है? मान लीजिए कि आपका मोबाइल फोन लगातार इस्तेमाल, मतलब आप मोबाइल को लगातार इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपने उसे चार्ज नहीं किया तो कभी ना कभी वहां हैंग होने लगता है और धीरे धीरे बंद भी हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी लगातार काम करता है, तो उस वजह से ना उसे आराम मिलता है और वो थक भी जाता है, जिससे थकान धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाती है। दोस्तों मेडिटेशन तनाव को कैसे कम करता है, आइए थोड़ा देखते हैं कि जब हम धीरे धीरे गहरी सांस लेते हैं, अपना ध्यान केवल सांसों पर रखते हैं, तो हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है, दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगती है, मन शांत हो जाता है और जो घबराहट होती है वो भी कम हो जाती है। सोचने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद हो जाते हैं, जो कि आजकल हर कोई होता है। क्या मेडिटेशन सिर्फ बड़े लोग कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं? ये बातें नहीं होती कि सिर्फ बड़े लोग मेडिटेशन करते हैं या मतलब इस एज तक हम मेडिटेशन कर सकते हैं। विद्यार्थी हो, कोई व्यापारी हो, कोई भी हो जो स्ट्रेस में है वह मेडिटेशन कर सकता है। विद्यार्थी परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए करते हैं, जो उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जो हमारी हाउसवाइफ होती है वो पूरे दिन की जिम्मेदारियों के बीच में कुछ मिनट निकालकर मेडिटेशन कर सकती है। बुजुर्ग जो होते हैं वो मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। यानी मेडिटेशन हर उम्र में हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। आइए छोटा सा मेडिटेशन अभी भी करते हैं। जहां भी हैं आराम से बैठे, अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए और फिर से गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब केवल अपनी सांसों को महसूस कीजिए। अगर कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश ना करें, बस उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। करीब एक मिनट तक केवल अपनी सांसों पर ही ध्यान देंगे और धीरे धीरे आंखें खोलिए। कैसा महसूस हुआ? अच्छा ना, शायद थोड़ा हल्का और शांत। यही मेडिटेशन है दोस्तों। क्या आप रोज घंटे मेडिटेशन करना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप केवल 5 से 10 मिनट भी रोज के मेडिटेशन को देते हैं तो कुछ दिनों में ही आप देखेंगे आप बहुत ही पॉजिटिव सोच रखने लगेंगे, स्ट्रेस जो होता है उससे आप एकदम फ्री हो जाएंगे। मेडिटेशन करते समय हमें बहुत सी चीजें देखनी चाहिए, जैसे हमें शांत जगह चुननी चाहिए, मोबाइल को कुछ देर के लिए साइलेंट रखना चाहिए, आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए, अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम हमें जल्दी देखने को मिलता है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक गिलास का पानी है, उसमें हम मिट्टी घोल देते हैं। अगर हम उसे लगातार हिलाते रहते हैं तो पानी कभी भी साफ नहीं होगा, लेकिन अगर उसे कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। वैसे ही हमारा मन होता है दोस्तों। जब हम उसे मेडिटेशन के माध्यम से कुछ समय के लिए शांत रहने देते हैं तो उलझे हुए विचार जो होते हैं, जो जिसका कभी कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाता हमें, वो भी हमें उसके सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। तो दोस्तों तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन तनाव में जीना हमारी मजबूरी नहीं है। और दोस्तों जब जिंदगी की रफ्तार तेज हो जाए, मन उलझने लगे, तो थोड़ी देर ठहरना बहुत जरूरी होता है और इसी ठहराव का नाम है मेडिटेशन। आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें सुकून, उम्मीद और भीतर की शांति का एहसास करवाता है।

वैसे दोस्तों, आज सुबह की चाय के साथ अगर आपने अखबार पलटा होगा तो एक नाम जरूर देखा होगा, नीति आयोग। कभी कोई नई रिपोर्ट की खबर, कभी कोई योजना की घोषणा, लगता है ये नाम अब हमारे विकास और भविष्य से गहराई से जुड़ गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह नीति आयोग आखिर है क्या, ये करता क्या है और ये हमारे देश के विकास में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का विषय भी यही है।

0: नीति आयोग यानी भारत के विकास की नई दिशा। दोस्तों, आज का भारत तेजी से चेंज हो रहा है। तकनीकी, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र में नए विचार और नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और इसी सोच को दिशा देने के लिए वर्ष 2015 में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जब योजना आयोग की जगह बनाई गई नीति आयोग ने ले ली। यानी नीति आयोग भारत की विकास यात्रा में एक नया अध्याय है। इसका अगर नाम की बात करें तो उसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी भारत को रूपांतरण करने वाली संस्था। और सच कहें तो ये नाम अपने आप में इसका उद्देश्य बता देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले भी तो योजना आयोग था, फिर भी बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल दोस्तों, समय बदल गया है, जरूरतें भी बदल गई हैं। पहले हमारा ध्यान सिर्फ केंद्र की योजना बनाकर राज्यों तक पहुंचाने पर था, लेकिन अब जरूरी थी राज्यों की भागीदारी से योजना बनाने की, यानी टॉप डाउन मॉडल से हटाकर बॉटम अप सोचने की। और यही सोच लेकर नीति आयोग आया है, जहां हर राज्य की अपनी आवाज, अपनी प्राथमिकताएं और अपने सपने शामिल हैं। नीति आयोग दोस्तों देश के संतुलित और सतत विकास के लिए नीतियां बनाता है। यह कोई मंत्रालय नहीं है, बल्कि एक थिंक टैंक है जो सुझाव देता है कि नीतियां तैयार करता है और विकास यानी डेवलपमेंट की दिशा तय करने में हेल्प करता है। इसका अगर नेतृत्व की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री और इसके उपाध्यक्ष तथा सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं, जैसे अर्थशास्त्र, शिक्षा, कृषि, विज्ञान और तकनीकी और समाज सेवा। दोस्तों, नीति आयोग की एक खासियत ये भी है कि यह सिर्फ योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि राज्यों के बीच सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों ही बनाता है दोस्तों। यानी जो राज्य अच्छा काम करे उसकी तारीफ भी हो और दूसरे राज्यों को भी प्रेरणा मिले। हम इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंड कंपेरिटिव फेडरलिज्म। यह शब्द सुनने में थोड़े कठिन लगते हैं, पर असल में यह बहुत सरल है। मतलब इसका यह है कि सभी राज्य एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक्स की जो नीति आयोग को शुरू करती हैं। सबसे पहले है एस्पिरेशनल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम। देश के उन जिलों को आगे बढ़ाने की कोशिश है जहां विकास में वह बहुत पीछे है। इस कार्यक्रम ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आधारभूत सुविधाओं में बड़ा बदलाव किया है। अगली हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र में दिशा निर्देशों के अनुरूप नीति आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि भारत का विकास पर्यावरण और समाज दोनों के लिए संतुलित रहेगा। दोस्तों, नीति आयोग केवल सरकार की संस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां सरकार, समाज और नागरिक तीनों मिलकर देश की दिशा तय करते हैं। हर नीति के पीछे एक सोच होती है, कैसे हर भारतीय का जीवन बेहतर बने, कैसे गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति विकास की यात्रा में शामिल हो। कोविड-19 के कठिन समय में भी नीति आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। स्वास्थ्य ढांचा सुधारने से केवल टीकाकरण की योजना तक हर स्तर पर यहां संस्था राज्यों और केंद्रों के बीच सेतु बनी रही। और आज जब भारत विकसित भारत 2040 संचार के सपने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो नीति आयोग उस सपने की दिशा तय करने वाला मार्गदर्शक बन गया है। अब सोचिए दोस्तों, अगर हर नीति में राज्यों की राय शामिल होती है, अगर हर योजना में जनता की भागीदारी होती है, तो क्या विकास सिर्फ कागजों पर ही रह सकता है? नहीं, यह तो नीति आयोग की असली सफलता है। जनता से जुड़ना और जनता के लिए काम करना, यही नीति आयोग का मेन उद्देश्य है। आज हमने यही जाना है कि जो नीति आयोग है वो एक संस्था नहीं, बल्कि भारत के नए युग का विचार है। इसी के साथ दोस्तों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित यह मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को यह गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग

शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह आप घर से निकलते हैं, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ना धुएं का गुब्बारा, ना इंजन का तेज शोर, चारों तरफ एक शांत माहौल और सड़क पर दौड़ रहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां। क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले समय में पेट्रोल पंपों की जगह चार्जिंग स्टेशन ज्यादा दिखाई दे? क्या सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य है या फिर सिर्फ एक नया ट्रेंड? आज हम इसी दिलचस्प टॉपिक पे बात करते हैं, ई व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक वाहन। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होते क्या है। बहुत आसान भाषा में कहूँ तो ई व्हीकल वो वाहन होते हैं जो पेट्रोल या डीजल की बजाय

से मिलने वाली बिजली पर चलते हैं। इनमें इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर होती है और यही मोटर गाड़ी को चलाती है। जब भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता प्रदूषण और ईंधन की बढ़ती कीमतें। अब सोचिए, जब सड़क पर लाखों गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं तो उसका असर हमारी हवा, पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। तो दोस्तों, अगर इसके फायदे की बात करें तो पहला फायदा तो इसमें यही होगा कि इसमें प्रदूषण जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन चलते समय धुआं नहीं छोड़ते, इसलिए वायु प्रदूषण कम होता है। अगर इसके दूसरे फायदे की बात करें तो कम खर्च होता है। बिजली से वाहन चलने की लागत अक्सर पेट्रोल या डीजल की तुलना में कम ही होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कम शोर होता है। इलेक्ट्रिक वाहन लगभग बिना आवाज के ही चलते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। यानी एक व्हीकल से तीन चीजों की बचत होती है, कम प्रदूषण होता है, कम खर्च होता है और ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। लेकिन नई तकनीकी के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आती है दोस्तों। वही बात है कि बदलाव जरूरी है। जैसे चार्जिंग स्टेशन कभी हर जगह उपलब्ध नहीं होते, बैटरी चार्ज होने के समय लगता है और बैटरी बदलना भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। हालांकि सरकार और कई कंपनियां लगातार नए चार्जिंग स्टेशन बना रही है और बैटरी तकनीकी को भी बेहतर बनाने में काम कर रही है। भारत में भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है दोस्तों, और बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि प्रदूषण कम करना है, ऊर्जा की बचत करना है और भविष्य को अधिक स्वस्थ बनाना है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले वर्षों में भी सभी वाहन इलेक्ट्रिक हो जाएंगे? तो इसका जवाब आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। जैसे जैसे तकनीकी बेहतर होगी, बैटरियां सस्ती होगी और चार्जिंग सुविधाएं बढ़ेगी, वैसे वैसे इनका उपयोग भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें नई और स्वस्थ तकनीकों को अपनाना चाहिए। और इसी सफर के साथ आगे चलते हैं और सुनते हैं एक सॉन्ग।

तो दोस्तों अब वक्त हो गया है रोजगार समाचार का। दोस्तों रोजगार समाचार कुछ इस प्रकार है। आरआरबी रेलवे सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 14 अगस्त। और दोस्तों बाकी जो अधिक जानकारियां हैं इसके अंदर, जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, आवेदन की प्रक्रिया सहित अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट

www.rrbapplied.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने आपसे पूछे थे दो क्विज क्वेश्चन, मुझे लगता है कि आपने उनका सवाल का जवाब निकाल लिया होगा। तो जैसे कि हमारा पहला प्रश्न था, पंखुड़ी पोर्टल एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। और इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न था कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट समिति 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आपने इन क्विज के जो आंसर है वो बिल्कुल सही निकाले होंगे। इसी के साथ आज हमने बहुत सारी जानकारियों का भी जानकारी भी हमने देखी, जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, मेडिटेशन और परिवर्तन ही बदलाव है, ये सब चीजें हमने की। साथ ही हमने बहुत से अच्छे अच्छे गाने सुने, हमने कैलाश खेर का संदेश सुना। तो दोस्तों इसी मस्ती मजाक और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे कल। अभी के लिए करती हूँ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मैं हूँ भवानी, नमस्कार।

था युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8 बजे कार्यक्रम संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी शाम 6:42 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00। श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम में चर्चा कृषि संबंधी स्टार्टअप्स, एक जिला एक उत्पाद, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जनगणना से बेहतर योजना क्रियान्वयन, साथ ही अन्य जानकारियां और लोक संगीत। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00।

फिल्म संगीत ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर। लोक संगीत होगा हमारी सभा में रात्रि 8:30।

हमारी सभा में फिल्म संगीत के प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 6:05 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आज सुनिएगा कार्यक्रम में अर्पण फिल्म के गीत। रात्रि 8:15 आप सुनेंगे फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 फिल्म संगीत होगा और फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम एक ही संगीतकार सुनिएगा रात्रि 9:30 पर।

श्रोताओं, ये था हमारी सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्ज पर शाम के 6 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 5 वर्ष की अवधि में कुल 3,15,000 करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है। प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ही बेनिफिट जाता है। पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है। 85% ऑफ द फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस कम हुई है। जो लोकल लोन लेने का और जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक 84,084 करोड़ रुपए का स्वीकृत परिव्यय निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3,300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में भी वृद्धि की है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस दाखिल किया है। ये नोटिस पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर संसद में हुई बहस के दौरान श्री गांधी की टिप्पणियों के संबंध में है। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 40 से अधिक लोगों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान की कार्रवाई की गहन जांच करने और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न

हिस्सा हैं। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और तेल विपणन कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ये विशेष ईंधन भीषण जलवायु परिस्थितियों में लड़ाकू और रसद वाहनों की आवाजाही, सुरक्षा और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अधिक ऊंचाई और भीषण ठंड वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का व्यापक नागरिक उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मोपे को हराया। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। उधर देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज कार्यक्रम में सुनिए अर्पण फिल्म के गीत।

सबसे पहले सुनिए लता मंगेशकर को। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी

0: दुनिया घूमते आए देखते आए अब वही बसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, यह है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आकाशवाणी बीकानेर के ढूला मारू चैनल से। और आज इस कार्यक्रम

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है अर्पण, और अब सुनिए लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों को। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-220-2233 पर कॉल करें।

0: वह कलाकार अनवर, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। आज की फिल्म थी अर्पण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY को मंजूरी दे दी है। साथ ही पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता के जरिए इन निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाई गई है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 5,000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि इसके लिए अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं होगी। इसमें वर्तमान जलाशयों, नहरों और औद्योगिक तालाबों का उपयोग होगा। योजना की अवधि 5 वर्ष होगी।

0: किया जा सकता है और एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा कि जो पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शोर शराबे के बीच ही लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकना और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक सदन में पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच बिना किसी चर्चा के ये विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जयपुर राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आज से 2 अगस्त तक हो रहे इस

0: कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, विधि विशेषज्ञ, नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है। सम्मेलन में 8 तकनीकी सत्र रखे गए हैं। इनमें मध्यस्थता, न्याय तक प्रभावी और समावेशी पहुंच और कानून के शासन को मजबूत करने सहित अन्य मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा शांति मध्यस्थता है। इसके जरिए पक्षकारों की आपसी सहमति से समाधान पर जोर दिया जाएगा और समाज में शांति और सौहार्द की आवाज को बुलंद किया जाएगा। जयपुर में आज से इंडिया ट्रेवल मार्ट की शुरुआत हुई। पर्यटन उद्योग में नए अवसरों, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन रखा गया है। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन पर और ब्यौरा समाचार कक्ष से।
1: IITM देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटक मेलों में से एक है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं। IITM में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी। रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया है कि सरकार जल्दी ही आरक्षित वार्डों की घोषणा कर देगी। इसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि इन चुनावों की अधिसूचना 15 अगस्त को जारी होगी।
2: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव 2 चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव 4 चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
0: नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव 1 state 1 election के आधार पर कराए जाएंगे। श्री खर्रा आज झुंझुनू के कमालसर गांव पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां इस साल मार्च में ही पूरी कर ली गई थी। अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग के जिम्मे है।
3: नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज

प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया जा रहा है। राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने बताया कि ये सर्वे राज्य के सभी जिलों की तहसीलों और राजस्व गांवों में ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री प्रसाद ने आज वीसी के जरिए खरीफ फसल की गिरदावरी के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वीसी में राज्य के सभी जिलों के प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार, रिसोर्स पर्सन और मास्टर ट्रेनर जुड़े। डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत प्रदेश के 4,62,00,000 से ज्यादा खसरों के नियमों के अनुसार गिरदावरी की जाएगी। 2,86,00,000 कृषि योग्य खसरों को सर्वे के लिए चिन्हित किया गया है। बाकी खसरों में सरकारी भूमि, गैर कृषि भूमि की गिरदावरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज खसरा

0: गिरदावरी मोबाइल ऐप से ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि सर्वे से मिलने वाले आंकड़े फसल उत्पादन, आकलन, नीति निर्माण, पीएम फसल योजना और प्राकृतिक आपदा राहत सहित अन्य योजनाओं के लिए आधार प्रदान करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल से देशभर में स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। स्वस्थ भारत के लिए परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य प्रदाताओं के बीच स्तनपान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नवजात शिशु के स्वस्थ विकास के लिए स्तनपान सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। इस मौके पर मंत्रालय ने स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नागरिकों से स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया है, जिससे हर बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम शुरुआत मिल सके। राज्य पीसीपीएनडीटी टीम ने जोधपुर में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि आरोपी निजी नर्सिंग होम पर पिछले काफी समय से ये काम कर रहा था। उसके कब्जे से पोर्टेबल मशीन और परीक्षण के एवज में ली गई 50,000 रूपए की राशि भी बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि पीसीपीएनडीटी परियोजना निदेशक सोनल मीणा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजलि जोरवाल की अगुवाई में टीम गठित कर ये कार्रवाई की गई। प्रदेश में साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस की ओर से लोगों से किसी भी संदिग्ध लिंक या अनजान व्यक्ति के कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री ने लोगों से किसी भी तरह की साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराने या नजदीकी पुलिस थाने को संपर्क करने को कहा है।
1: मेरा आपसे निवेदन है, कभी भी छोटे से कमीशन के चक्कर में आप स्वयं अपराध के जगत से ना जुड़े। संचार साथी पोर्टल ये भारत सरकार द्वारा खोला गया है। आपके परिवार में कोई भी समझदार व्यक्ति है तो आज आप जाकर दो काम करें। एक तो बैंक में अवश्य चेक करें कि कहीं कोई इस तरीके के अकाउंट में आपका अमाउंट तो नहीं आ रहा जो आपकी नॉलेज के बाहर है। और नंबर दो, आपके नाम से कितनी सिम इशू हो गई है, ये आपको संचार साथी पोर्टल पे आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं तथा आपके परिवार में जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं उसमें आपको मदद कर सकते हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। ऊर्जा भंडारण के लिए पीएम सूर्य सरोवर योजना शुरू होगी। राष्ट्रमंडल देशों का न्यायिक महाकुंभ आज से जयपुर में। शांति, मध्यस्थता और कानून के शासन को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर मंथन होगा। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर 15 अगस्त को अधिसूचना जारी होने की उम्मीद। और प्रदेश भर में कल से खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। पिछले महीने जिले में रोजगार, जनकल्याण, कृषि, स्वास्थ्य, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। अच्छी मानसूनी बारिश से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। सरकारी योजनाओं की समीक्षा के साथ विकास कार्यों को गति देने पर भी जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पास रिफाइनरी का लोकार्पण कर प्रदेश में सरकारी नौकरी में नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इसके तहत भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर भी कार्यक्रम हुआ, जहां नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। नियुक्ति पत्र मिलने पर अभ्यर्थियों ने खुशी जताई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीलवाड़ा सहित विभिन्न जिलों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाने, विकास कार्यों में तेजी बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए। नगरीय विकास और आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भीलवाड़ा में शहरी जन कल्याण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम और नगर विकास न्यास में लगाए गए शिविरों का अवलोकन कर लाभार्थियों को आवासीय पट्टे वितरित किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविरों में आने वाले लोगों के काम तय समय में पूरे किए।

0: हैं ताकि आमजन को राहत मिले। जिले में मॉनसून की अच्छी बारिश का असर अब खेतों और जलाशयों में दिखाई देने लगा है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश से नदी, तालाब और बांधों में पानी की आवक हुई है। आसींद क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। बारिश से खरीफ फसलों को भी संजीवनी मिली है। मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्वार और तिल की फसलें अच्छी स्थिति में है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह अनुकूल रहा तो इस बार उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। श्रावण माह के शुरू होने पर जिले के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। तिलस्मा और हरिणी महादेव सहित विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और सहस्त्र धारा की जा रही है। सुबह से देर शाम तक श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर में पूरे सावन माह के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। महात्मा गांधी चिकित्सालय में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की समीक्षा कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। मामले की जांच जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने दूर दराज से उपचार के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए विशेष देखभाल वार्ड की व्यवस्था भी शुरू की है। अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन मैदान में होगा। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने समारोह की तैयारियों की समीक्षा कर सभी विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच नगर निकाय चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए रिटर्निंग अधिकारियों तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अन्य प्रशासनिक काम भी शुरू कर दिए गए हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत भारत सरकार के केंद्रीय दल ने भीलवाड़ा का दौरा किया और समीक्षा बैठक की। बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और रोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिला प्रशासन ने बताया कि जिले के सभी 14 विकास खंडों में 831 विकास कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। विदेशों में रहने वाले भाइयों तक समय पर राखियां पहुंचाने के लिए विशेष लिफाफों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में बहनों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और विदेशों के लिए राखियां बुक कराई हैं। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिस अदालत में आज हुई कैबिनेट मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। ऊर्जा भंडारण स्वरूप पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई चावेला। राष्ट्रमंडल देशों न्यायिक महाकुंभ जयपुर में शांति मध्यस्थता और कानून का राज में मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव स्वरूप 15 अगस्त में अधिसूचना जारी करी चावेला और राज्य में काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो चावेला। समाचार सागर में सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना ने मंजूरी देनी है। इस आगे पीएम किसान योजना और खेलो इंडिया री मियाद 5 साल सारू बधावन रो फैसलो करी चियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेट री मीटिंग में कई खास फैसला करी चिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में खबर नवीसा ने मीटिंग में करी चिया फैसला री जानकारी देनी। वे बतायो कि जल निकायों माथे फ्लोटिंग सोलर पैनल और ऊर्जा भंडारण प्रणाली सरूकरण सारू प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना लाईची है। मंत्री बतायो कई सारू 5,070 करोड़ रुपए रो बजट रखी चियो है। वे कहो कि ई योजना रातेत 5,000 मेगावाट री 33

घंटे की एनर्जी स्टोरेज भी स्कीम में रखी गई है, जिससे कि जो पीक डिमांड है उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट किया जा सके। प्रोजेक्ट्स विल बी सेलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। सबसे अच्छी बात है कि

0: पानी का इवेपोरेशन हो जाता है वो बचेगा।
1: संसद रात दोनों सदन की कार्रवाई नीट पेपर लीक मुद्दा माथा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथा विपक्ष हंगामों आज ही चालतो रहो। लोकसभा में शोर शराबा बीच जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 पास करती उचियो। इन बिल रो मकसद जन्म और मौत रा पंजीकरण में मोड़ो विवरण रोकन सागे फर्जी कागजात माथे रोक लगावनो है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सदन में वो बिल पेश कीनो। विपक्षरा हंगामा बीच बिना चर्चा वो बिल पास करती उचियो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये बिल माथे चर्चा में शामिल नहीं भेवन पर विपक्षरी आलोचना कीनी। संसद रात दोनों सदन की कार्रवाई सोमवार तक टालती रिजी है। जयपुर में आज राष्ट्रमंडल शांति और मध्यस्थता सम्मेलन शुरू हो है। 2 अगस्त तक चलने वाला इस सम्मेलन में कॉमनवेल्थ देशों का जज, कानून का जानकार, नीतियां बनाने वाला और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नुमाइंदा शामिल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत इस सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद है। सम्मेलन रा 8 तकनीकी सत्र में मध्यस्थता, न्याय तई सगड़ा दी असरदार पहुंच और कानून रा राज ने मजबूत बनावन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो जा रियो है। सम्मेलन री सब खास बात शांति मध्यस्थता है, जिनके जरिए पक्षकारों रा आपसी राजीनामाओं समाधान माथे जोर दियो जावेला। राज्यपाल हरिभाव बागड़े जनजातीय हल्का में ऊंचा दर्जा री भुनाई ने बधावो देवन सारू बत्तियों बत्ती कोशिशों करण माथे जोर दिनो है। वे आज जयपुर रा लोक भवन बांसवाड़ा रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में बनाई जा नुआ अकादमिक भवन रो उद्घाटन करण और स्वामी विवेकानंद री मूर्त रो अनावरण करण रे मौके बोल रहा है। राज्यपाल कहियो के आदिवासी जल जंगल और जमीरा साचा पहरेदार वह है और वाणी पानी और कुदरत ने बचाव ने जुड़िया रीति रिवाज माथे शोध और अनुसंधान करो जानो चाहिए। राज्यपाल प्रदेश में नशारी लत जड़ों खत्म करण सारू स्थानीय लोगों चर्चा कर लगातार कोशिशा करण बाबत कहियो। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम में ऑनलाइन तरीका शामिल हुआ। जयपुर में आज इंडिया ट्रेवल मार्ट शुरू हुआ। सैर सपाटा जुड़े कारोबार में नुआ मौका, निवेश और भागीदारी ने बधाओ देवन सारू वो आयोजन रखो जा रो है। 2 अगस्त तक चलन वाला इंडिया ट्रेवल मार्ट रबारा माए और ब्यूरो समाचार कक्ष।
2: आईटीएम देश के प्रमुख यात्रा और पर्यटन मेलों में से एक है। ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसमें 10 देशों के 2000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। देश भर से पर्यटन बोर्ड, होटल और रिसोर्ट्स, एयरलाइंस और क्रूज कंपनियां तथा टूर ऑपरेटर भी भाग ले रहे हैं। आईटीएम में प्रतिभागियों को नेटवर्किंग के मौके भी मिलेंगे। इसमें मेडिकल टूरिज्म और थीम आधारित पर्यटन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदर्शकों और खरीदारों के बीच B2B बैठकें भी होगी। रामनाथ मीना, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह कहो है कि सरकार बेगवई आरक्षित वार्डा नो ऐलान करेला जिन पाछे निकाय और पंचायत चुनाव री तैयारियां ने अंतिम रूप दियो च

0: आकाशवाणी सागर खास बातचीत दौरान वे बतायो कि चुनाव री अधिसूचना 15 अगस्त में जारी करी जावेला।
1: देखिए, ये पहली बार है जब सारे नगरीय निकायों के और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। हालांकि होंगे क्रमिक रूप से, पहले नगरीय निकायों का चुनाव होगा और उसके बाद फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का कराएंगे। जो नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव दो चरण में कराएंगे और पंचायती राज के चुनाव चार चरण में कराएंगे। और हम लोग जो है इसके लिए दिन रात लगे हुए हैं कि ये चुनाव जो है बिल्कुल त्रुटिहीन तरीके से, नियमानुसार तरीके से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो।
0: ये विजय नगरीय विकास है स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा कह रहा है कि प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन रा आधार कराया जावेला। श्री खर्रा आज झुंझुनू जिला रा कमालसर गांव में रखे जाए गैर सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए पाछे खबर नवी सा सागे बातचीत कर रहा है। वे कहो कि महकमा री ओर चुनाव जुड़ी सगली तैयारियां ई साल मार्च महीना में ही पूरी कर ली रही है।

मुंशी प्रेमचंद ने सिद्धा भावसागर यादगार तंत्र का कहो कि वह मेरी काल जयी रचनावा नजरिए इंसान की भावनाओं ने मजबूत तरीके रखी हमारो साहित्य हमेशा सीख देते रहना। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत में आज भी कैबिनेटरी मीटिंग में कई खास फैसला करी छिया। ऊर्जा भंडारण सारू पीएम सूर्य सरोवर योजना चलाई जावेला। राष्ट्रमंडल देशों रो न्यायिक महाकुंभ जयपुर में शांति मध्यस्थता और कानून रा राज ने मजबूत करण समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो जावेला। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव सारू 15 अगस्त में अधिसूचना जारी करी जावेला। राज्य में काल खरीफ डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करियो जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढूला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: ग्रामीण जगत रो कार्यक्रम सुनला सके ग्रामीण भाई ने और किसान भाई ने सपनान शर्मा और
1: संदीप पारिखरा घना घना राम राम
0: राम राम संदीप भाई राम राम
1: राम राम राम राम ओ इन बैठो सतनारायण भाई आज तो बहुत दिन बाद थे देखो चौपाल में आया
0: देखो भाई बात यह है कि अब काम जगह नहीं बढ़ गया है पहला तो कहीं है कि जगह परंपरागत खेती भी मैं थोड़ा बहुत ही काम लिया करते अपन बुआई कर दी सिंचाई होगी पछे खरपतवार कर दिया और पछे अपन फसल की तैयारी पर अब कहीं है कि नियम ऐसा काम वापर गया जिक्र मैंने कहे कि पूरा दिन और पूरा महीने व्यस्त रहना
1: भाई देखो ये साहब तो एक चीज है कि आपने जगह बुजुर्ग है बहुत सुखी है अब थारी उम्र बढ़ रही है सागर काम बढ़ रहा है देखो तो देखो फोड़ा पड़ गया
0: तकनीक रो जमानो आ गया है परंपरागत का तरीका भी सीमित नहीं पार पड़े को नहीं भगत रसागर नहीं चाल सा तो लारे रह जैसा हर तरीके से लारे रह जैसा तो भगत रसागर चाला हाँ और अपन खेती बाड़ी और जी कृषि है मेरे मैं भी कही है कि नवाचार अपना अपरा नई तकनीक अपना अपरा आप कही है कि अपन खेती लागत में जी की कमी करा है और इन घणो घणो मुनाफो घणो घणी आमदनी अपन क्या बढ़ावा मेरे सारो जतन जी का आप करा
1: बिल्कुल और हाँ हाँ बोलो बोलो
0: और आज भगत मैंने आप सुना है कि नवा छोरा छोटा छोटा टाबरिया जी का है नी युवा पीढ़ी जी की है ऐसा ऐसा काम करे है घरे बैठा काम करे है और छोटे से थोड़े से पैसे में थोड़ी सी जगह मैंने कंप्यूटर द्वारा ऐसा ऐसा काम करे कि चौकी आमदनी करे तो अपन खेती में भी और भी बोला है स्टार्टअप
1: हाँ,
0: तो अपन खेती में भी कही है कि ऐसा स्टार्टअप जी का है अपना नवाचार करा जिके सु कहे कि अपन खेती की आमदनी जी की बढ़े
1: बिल्कुल देखो आप जो कोई इशारो कर रहे हो देखो बात मैं समझ रहा हूँ कि आपने जाना कि आपने देश चुका वो कृषि प्रधान देश है और जट देश की बड़ी आबादी जकी है वह सीधे या आप समझ लो अप्रत्यक्ष रूप से सीधे जुड़ाव है या बिना सीधे जुड़ाव भी आप कह सकते वो खेती पर निर्भर है तो बदलते समय के साथ गए खेती बाड़ी में भी आधुनिक तकनीक उपयोग चुको है भाई वो तेजी से बढ़ रही है आप देखो राजस्थान में रहा और राजस्थान में भी आप क्या है कि पश्चिमी राजस्थान में रहा तो जिकी तकनीक है बंग कानी आप ध्यान कम गयो है या बंग लाभ चुको है बिना आप अभी तक पूरी ढंग से समझ को नहीं पाया पूरी तरह से तो और जो परिवर्तन हो रहे हैं कृषि संबंधी स्टार्टअप जो आप जिक्र करो अबार वो किसानों की समस्या व समाधान जो है बिना नई तकनीक से करे और व्यावसायिक मॉडल के माध्यम से करे और जो स्टार्टअप है ऐ खेती की ज्यादा जानकारी बिंग टिकाऊपन और आधुनिक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभावे
0: सही बात कही

0: कबीर उद्देश्य जी को भी वही है कि नई तकनीक नई सोच और नई सेवा के माध्यम से किसानों में जी समस्या है ज्ञान समाधान करनो। कई अपना युवा जी का है वह पढ़ लिखकर खेती में नवाचार लाउन लाग रहा है, कोई मोबाइल ऐप बनावे, कोई ड्रोन सु कहीं है कि दवाई रो छिड़काव करे, कोई बीजोपचार करे, कोई बीज रो छिड़काव करे, और कई जी का है किसान ने सीधे आपरे मंडी से जोड़ पर ग्राहक जोड़न रो काम करे, जिके सु कहीं है कि बिचौलिया जी की कमाई नहीं वा कहीं है कि अपन बचत हुए और आपा कहीं है पूरे मुनाफो पूरी जिकी उपज फसल जिकी दाम है व्यापन है पूरा मिले। आज कई ऐसा स्टार्टअप आ गया है जिका किसाना ने बगत उपेला कहीं है कि मौसम री जानकारी देवे, फसल री सलाह देवे, मिट्टी री जांच, बीज रो चयन, सिंचाई रो प्रबंधन किया करा और रोग और कीट रो नियंत्रण बगत सारो किया करा, आ सगली जानकारी मोबाइल द्वारा अपन किसाना ने दिया करे। तो जिके सु कहीं है कि किसान आप सावचेत हो जाए और आप जिका जरूरी कदम जिका है खेती सारू वह उठा ले और आप मुनाफो खेती में बढ़ाने सारू करें।
1: बिल्कुल, और देखो भारत सरकार जिकी है वह भी कृषि स्टार्टअप्स ने बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता भी देवे, ट्रेनिंग जिकी वह भी देवे, और इन नवाचार ने आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कई सुविधाओं जिकी है वे भी दिया करे। जैके अपना जगह जो जवान भाई है वह में खेती आधारित रुचि जकी है वह बढ़े और आपने गांव में रहता था कहीं रोजगार रा नया अवसर जका है वह भी बढ़ाने का प्रयास जका हो रहा है। हालांकि देखो ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की उपलब्धता थोड़ी सीमित है, लेकिन सुविधा जिकी है दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है और तकनीकी जानकारी वो अभाव जो है वो कम होते जा रहे, जबकि सु अपना जो जवान भाई है भविष्य के लिए आपको जो को एक कह रहे नहीं आगे की सोच है मैंने बहुत लंबे रूप से बढ़ा।
0: सही बात कही, एक विशेष रूप जिका अपना युवा किसान है बिहार खातर ओ भगत जी को घणो सुनर है और कोई किसान जिका है आप खेत्री में नई सोच मूल्य संवर्धन खाद प्रसंस्करण जो आजकल चालिया करे वही अभी साफ सुथरो कर पर आगे भी बेचनो, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, बागवानी, औषधीय पौधारी खेती, ड्रोन की सेवा, कृषि यंत्र जिका आजकल किराए पे मथे भी मिलिया करे तो पूरा भी काम जो है कर सके और डिजिटल कृषि सेवा जैसा काम स्टार्टअप रूप में शुरू कर आप व्यवसाय कर सके। तो कृषि स्टार्टअप जो है खाली व्यवसाय को नहीं और किसान सारू खेती सारू आधुनिक है लाभकारी और आत्मनिर्भर बनाने सारू माध्यम है। तो नई तकनीक अपनाओ, जानकारी बढ़ाओ और अवसर रो लाभ जिको है अपन उठानो सीजे और आज रो किसान जितो जागरूक हो सी जितनी खेती मजबूत हो सी जितो गांव और देश समृद्ध हो सी।
1: बिल्कुल, और देखो एक चीज मैं आपने और बताऊं, तकनीक की जगह पर बात करा तो आज जिका अवसर है वह पहली को नहीं है।
0: हाँ।
1: अब जी आप गांव में रह गए भी आपने जो सिंचाई की सुविधा है।
0: हाँ।
1: तो फूलों की खेती करके आप फूल को उत्पादन कर सका और सागे सागे शहद को उत्पादन करके बिन बेच सका, कई तरह का सोशल मीडिया है माध्यम से आप घर बैठे बेच सका, इन्हीं प्रकार मशरूम को उत्पादन करके भी आप गांव में बैठे बैठे मशरूम की मांग जी है
0: और आज बढ़ गई
1: है उत्पादन भी हो रही है। और इन्हीं सागे सागे एक चीज था और भी बताऊं, अब जी हाँ पुराने टाइम में आपने जगह मांचा होता, ढोलिया होता, मुड्डा होता, पिड्डा होता, वही मांग भी अब बढ़ रही है। तो ये चीज तो आपने गांव में है पहले से, तो आंगो उत्पादन करके आंगी मैन्युफैक्चरिंग करके भी गांव में बैठा थका आप आना देश
0: विदेश रूप में
1: बेच सका। बिल्कुल, दरकार इन चीज रही है कि इन विषय का नहीं थोड़ा सो सोचो जाओ
0: और अब एक दरकार और है कार्यक्रम आगे बढ़ाने की, एक मीठो शोक लोकगीत सुनने की
1: सुनाओ सब।

0: दुनिया घूमते आए देखते आए अब वही बसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणिपुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणिपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणिपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
4: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं आज काफी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम जमीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं आज दुनिया की एक चौथाई से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां लुप्त होने के किनारे पर हैं।
2: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मणिपुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
3: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मणिपुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
2: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मणिपुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
5: सीमा निसर गायड़ो गीतरलो सुनियो सा और बीरे सागे सुनिया संदेशा कही। और अब थोड़ी सी बात करा कि भाई देखो किसान जिका नवाचार कर पा रहा अपनी आमदनी जिकी है बढ़ावी है, पर आप जब खेती नहीं करा तो कई और भी काम करा हाँ, व्यापार करा हाँ, नौकरी करा हाँ, पर वो देखा हाँ कि हर भौगोलिक जिकी परिस्थिति है स्थिति है या कोई देश है गाँव है बट एक अलग पहचान हो करें। जहाँ बात करा अपन बीकानेरी तो बीकानेर जब नाम ले तो बीकानेरा भुजिया बीकानेरा रसगुल्ला अपने दिमाग में आया करें। इसा ही अपने देश का घनकड़ा शहर है जठेरी कोई ना कोई पहचान है, तो ये पहचान ने पूरे देश में फैलाने सारू अपना जी की सरकार है अपना जी का काम करने वाला है वे अपने सारू एक योजना चलाई है एक जिलो एक उत्पाद योजना। तो इरो उद्देश्य वही है कि भी जिले की विशेष पहचान ने मजबूत बनाना, स्थानीय उत्पाद है बिना देश विदेश तक पहुंचाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने सशक्त बनाना। और कठे देखो मिठाई कठे रसगुल्ला कठे नमकीन कठे मसाला कठे फल कठे सब्जी कठे हस्तल कठे कपड़ा और कठे दूध उत्पाद यहाँ कही है कि विशेष जी का है भी जिले रा भी स्थान रिया करे। तो एक जिलो एक उत्पाद योजना शुरू कर ई योजना के माध्यम से जिलो रे प्रमुख उत्पाद चुनी जाए करे और भी उत्पादन और भी पैकिंग ब्रांडिंग और विपणन मत है विशेष जी को है ध्यान दीजिए करें।
6: बिल्कुल सही बात है। और देखो सत्यनारायण भाई आज की योजना है इन योजना को मुख्य उद्देश्य ही वो है कि हर एक जिले की

0: को भी विशिष्ट उत्पाद है, तो बिना एक पिछाण मिले एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक बिंगी पहुंच सके वा बनाई जावे और स्थानीय कारीगर जका है या जका भी व्यापारी है बाना आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बाना मजबूत बनाना है। जी आप बात करी भुजिया की, रसगुल्ला की, पापड़ है, बड़ी है, नमकीन उद्योग है, उन सु बनेड़ी जकी चीजा है, हस्तशिल्प है, चमड़े की चीजा है, ए भी जिले की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान जकी है बिना बताया करे। तो पारंपरिक निर्माण विधियां जकी है आ चीजा का बनाने में काम में लाइजे और आज की ODOP जकी योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इन योजना के माध्यम से ए जितना भी उत्पाद है आंगी बेहतर ब्रांडिंग हुए, पैकेजिंग हुए और बाजार की सुविधा जकी है बाबा ने मिले। और इन योजना से सो बड़ो फायदो जको है बा अठगा रेणिया कारीगर है, छोटा उद्योग है, बाने इन योजना से फायदो हुए और सरकार द्वारा भी वो प्रयास करे जावे कि इन योजना ने आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की जिकी भी ट्रेनिंग है या तकनीकी सहायता है या फिर वित्तीय सहयोग जो को है वो भी दियो जावे ताकि उत्पाद की गुणवत्ता जिकी है बा बनी रहे और इन कंपटीशन में बा कोई कारण सु वो प्रोडक्ट जो को है वो उत्पाद जो को वो लार नहीं रहे और स्थानीय स्तर पर भी रोजगार नुआ नुआ अवसर जका है वह बने और अर्थव्यवस्था ने मजबूत करने महत्वपूर्ण भूमिका जिकी है इन योजनाएं की बनी भी रहे ताकि एक पहचान बने और वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसा अभियान जका है बने भी बढ़ावो जो को है वो मिले।
1: सही बात कही कि भाई एक जिलो एक उत्पाद केवल एक सरकारी योजना ही कोनी है बल्कि आत्मनिर्भर भारत स्थानीय उद्योगारी मजबूती और ग्रामीण विकास रो मजबूत आधार है। जब स्थानीय उत्पादा ने पहचान मिलसी तो किसान, कारीगर और उद्यमी तीनों ने सीधो लाभ मिलसी। तो आओ अपा सगला मिलपरा जिलो रो जो विशेष उत्पाद है बिने पहचाना, बिने गुणवत्ता बढ़ावा, नई तकनीक अपनावा और सरकारी योजना रो पूरा लाभ उठा पर और ई योजना रो फायदो जो है अपा लेवा। तो आ ई संदेश आ गई अपा कार्यक्रम में आगे बढ़ावा और एक मीठो शोक लोक गीत सगला मिलपरा सुना सा।

0: व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के भोला मारु चैनल की प्रस्तुति।
1: मुसीबतें और जरूरतें कभी बता के नहीं आती, ऐसे में मनप्पुरम फाइनेंस के साथ लीजिए एक स्मार्ट डिसीजन ताकि आप मुश्किलों का सामना कर सकें।
2: आपके हर फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपके साथ मनप्पुरम फाइनेंस जो लाए हैं इजी गोल्ड स्कीम, जिसमें जितने दिनों का होगा लोन उतना ही होगा इंटरेस्ट।
1: अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें नजदीकी मनप्पुरम फाइनेंस शाखा में या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
3: खेती री बात कर ली, व्यापार री बात कर ली, और अपा पशुपालन की बात नहीं करा तो सगली बात अधूरी रह जला। कई पशुपालक भाई नाराज हो जला कि हमारी काम री बात तो था करी कौन।
4: देखो नाराजगी तो मैं तो क्यों रखनी चाहिए और मैं कि नहीं नाराज करना चाहिए। तो आप जी की बात कह रहे हो कि जी का अपना पशुपालक भाई लोग है

0: बांगे हित की भी बांगे फायदे की भी कोई बात जकी है बापा ने
1: तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी बताओ
0: जल्दी जल्दी देखो अब उम्र सारू जी हम बोली जो भी बोलांगा
1: सांस तेज ना नहीं चीज खाता खाता बोल लो
0: तो यह है कि देखो एक बहुत बढ़िया योजना है राजस्थान सरकार की आपने पशुपालक भाई लोगों के लिए और भी योजना रो नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना और आज की योजना है इनका उद्देश्य है कि जितना भी पशुपालक भाई लोग है बाना आर्थिक रूप से मजबूत बनानो और बंग जो को भी दूध रो व्यवसाय है डेयरी व्यवसाय जो को है बिना बढ़ावा देनो और इन योजना के माध्यम से पशुपालक जका है बांगी जरूरत के अनुसार आसान शर्त पर लोन जो को है वो बान मिले ताकि वह पशुपालन से संबंधित जका भी काम है बान बढ़ा सके और आपकी जकी भी आमदनी है बी में भी बढ़ावो जो
1: का मतलब है कि कम ब्याज दर मत है ऋण सुविधा लेनी साहूकार पर निर्भरता कम करनी और संस्थागत जकी बैंकिंग है बैंक भी हूँ पशुपालक ने जोड़नी और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से जकी मिलने वाली राशि है

0: वो बन मिले, ताकि वे पशुपालन से संबंधित जका भी काम है बन बढ़ा सके और आपकी जकी भी आमदनी है भी में भी बढ़ावो जुका
1: कहने का मतलब है कि कम ब्याज दर में ऋण सुविधा लेनी, साहूकार पर निर्भरता कम करनी और संस्थागत जकी बैंकिंग है बैंक भी हूं पशुपालक ने जोड़नी और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से जकी मिलने वाली राशि है भी उपयोग पशुपालक अपना नया पशु खरीदने सारू रोज चारो उगाने सारू पशु आहार खरीदने सारू या दवाया सारू टीकाकरण कृत्रिम गर्भाधान डेयरी उपकरण और दूध उत्पादन बढ़ाने सारू और पशुशाला सुधार जैसा कार्य में कर सके।
0: और देखो आज की योजना जगह को नाम गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, तो इन योजना के अंतर्गत एक कार्ड जो को है वो बैंक के माध्यम से पशुपालक ने मिल जाकर है और ये एटीएम और कार्ड है नहीं हाँ, या एक कार्ड जो है वो मिल जाकर
1: और आवेदन में भगत आवश्यक दस्तावेज रूप में पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड बैंक खातों पशुपालन संबंधी जानकारी और दूसरा जगह जरूरी कागजात है वह जमा कराना पड़ा है और पात्रता और ऋण सीमा समय समय पर कहीं है का सरकारी नियमानुसार निर्धारित होया करे तो बा अपन जानकारी बैठे अपन जासा मिल जैसी।
0: बिल्कुल, और ई योजना के अंतर्गत जिकी भी वित्तीय सहायता मिले बा कम ब्याज ऋण पर मिले, मतलब ब्याज जो वो कम मिले तो आपने की सु दूसरे सु ऊंचे ब्याज पर लोन लेने की या उधार लेने की दरकार को नहीं। और आज की योजना है इसु राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिकी है बा मजबूत हो और सरकार का नहीं भी वो प्रयास कर जाए कि समय समय पर इन योजना का जगह भी नियम है या ऋण लेने की जगह सीमा है या जिकी पात्रता है कौन बन सके इन योजना को फायदा उठाने के लिए लाभार्थी, तो बम में भी कई बार बीच बीच में संशोधन जगह है सरकार का निशु होता रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह पशुपालक भाई लोग है वह इन योजना को फायदा जो है वह ले सके। तो आखिर में आप कह सका कि जिकी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है आप पशुपालक के लिए एक बहुत ही उपयोगी और कल्याणकारी योजना है और इन योजना पर बना समय पर वित्तीय सहायता देगे सरकार जी की पशुपालन व्यवसाय में लाभकारी बनाने को प्रयास करे दूध उत्पादन जो को है बिना बढ़ाने का प्रयास करे और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार जो को है बिना भी बढ़ाने का प्रयास जो है वह करने की सरकार
1: सही बात है संदीप भाई। और ज्यादा जानकारी चाहिए जाए तो आप नजदीकी पशुपालन विभाग है सहकारी डेयरी समिति है बैंक की शाखा है या कृषि विज्ञान केंद्र है बठो से संपर्क कर अपने जानकारी लेनी चाहिए। और भगत हो रही है कार्यक्रम आगे बढ़ाने सारू तो एक मीठो सो लोकगीत जी को है सुना सा।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तो देखो संदीप भाई, कई संदेश सुनिया, कई कीतला सुनिया, अब जी बात है नी भी बात रो सीधो संबंध को है देश रे विकास और आम नागरिक रे जीवन सु है, और वो विषय है जनगणना सु बेहतर योजना क्रियान्वयन। जनगणना जी की चाल रही है आ एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रक्रिया है, जिके माध्यम सु देश की कुल जनसंख्या, आयु, शिक्षा, रोजगार, आवास, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जैसी अनेक जानकारियां जी की है वे एकत्रित करी जाए, और आ जानकारी सरकार रे विकास योजना बनाने सारू और बेने प्रभावी ढंग से लागन करने सारू बिरो आधार बने।
2: बिल्कुल, आप देखा कि भी फलाने गांव में इत दो स्कूल है, फलाने जगह तो सड़क है, या बी शहर में तो ऐ चीजें हैं, बी शहर में ऐ सुविधाओं को नहीं, तो इनके पीछे जो को आधार है वो है जनगणना का आंकड़ा, और आ आंकड़ा के आधार पर सरकार आ सुनिश्चित करे कि कौन से क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, सड़क, पेयजल सुविधा, बिजली और अन्य मूलभूत की सुविधाएं है बाकी कितनी ज्यादा दरकार है, और सही और अपडेट आंकड़ा के कारण आ योजनाओं को लाभ जो को है वह

0: सी जिका पात्र लोग है बंग तई इन पुगाणो जो है वो आसान हो जावे और इनसु सरकारी धन को सदुपयोग हुए और विकास का जिका काम है मैं पारदर्शिता भी बढ़े और जिकी जवाबदेही है वह भी बढ़िया करे।
1: तो जनगणना जिकी है खाली सरकारी जिम्मेदारी कौन बल्कि प्रत्येक नागरिक को भी कर्तव्य है कि बस सही और पूरी जानकारी उपलब्ध करावे। गलत या दुई जानकारी सुन विकास योजनाएं प्रभावित हुए जिके सु कहीं के जहां बात करी के वास्तविक पात्र जिका है यहां तक लाभ पहुंचाने में कठिनाई हुआ करे। तो लास्ट में आई कैसे कहा कि जनगणना जी की जनसंख्या की गिनती कोनी देश रो समग्र विकास रो मजबूत आधार है।
0: और देखो एक चीज और है, आज के इन डिजिटल युग में तकनीक के उपयोग से जनगणना जी की है वह ज्यादा सटीक है, पारदर्शी है और बहुत तेजी से हो रही है। जबकि आंकड़ा की गुणवत्ता जिकी है बिनु सुधार हुए और जिकी योजनावा है वे प्रभावी रूप से आगे बढ़ाई जा रही
1: है। आई कह सका कि वो कदम जो है विकसित समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देवेला। चला आगे बढ़ा और सुना एक मीठो सो गीत लो।

ये था ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सुनिए ये भक्ति गीत। सबसे पहले गायिका है नीलम साहनी।

0: श्रोताओं, इस गुरु भक्ति भजन को गाया नवरत्न किराडू ने।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: और अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में महिमा का सेवा का गाया ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में

अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक है पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से

हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूँ लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा

था कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा, तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए। भाजपा के 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं। इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 8:15 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है जंगली। गायिका लता मंगेशकर, बोल हसरत जयपुरी के, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800-420-2233 पर कॉल करें।
2: जब सुन

0: वहाँ के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: यह है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और सुनिए मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है गबन, बोल हसरत जयपुरी के और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: और अब सुनिए श्रोताओं, हेमलता जसपाल और सुरेश वाडेकर को फिल्म का नाम है ख्वाब। गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर।

मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हनुमान दास और साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: वालों के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-220-2233 पर कॉल करें।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: और अब सुनिए गुलाम रसूल का गाया ये लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपने नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9।

0: नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
2: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 24,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीस्मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
2: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
2: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी

0: आने वाली सहायता में वृद्धि से देशभर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था। बाद में उनका शव नाली में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहरा जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी

0: साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी, तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंगोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पिंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंगोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं पर दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9.

अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9:15 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है गोलमाल, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार गुलजार और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: और अब सुनिए आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाजों में एक बार मुस्कुरा दो फिल्म का ये गीत, जिसके बोल लिखे इंदी वर्णे और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, फिल्म का नाम था सुहागन, गीतकार हसरत जयपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज कार्यक्रम में सुनिए मदन

इनकी संगीत रचनाओं वाले फिल्मी गीत। सुने कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम है अकेली मत जाइयो। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार मजहू सुल्तानपुरी हैं।

गजल। इस फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफी को, बोल साहिर लुधियानवी की और संगीत मदन मोहन का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं मदन मोहन। और अब सुनिए तलत महमूद की आवाज में देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया मदन मोहन ने।

ये थी लता मंगेशकर, फिल्म का नाम अनपढ़। गीतकार राजा मेहदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार है मदन मोहन। और अब सुनिए फिल्म संजोग से मुकेश को। बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं।

राजेंद्र कृष्ण की। ये गीत अभी आपने सुना और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं मदन मोहन। लीजिए सुनिए तलत महमूद को, फिल्म का नाम है जहां आरा। इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही संगीतकार यहीं संपन्न होता है। आज कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। आप श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण।

0: होने के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इसी महीने की को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में आज अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में अस्मिता ने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता। भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादुमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, रेड बाय शगुन चोपड़ा।

क्या कहने, बेहतरीन कलाम जनाब बलजीत सिंह साहब का कलाम है शायर में। जी हाँ सामीन, उम्मीद है आपको कलाम शायर में बलजीत सिंह साहब का ये कलाम पसंद आया होगा। आज के गुलिस्तान में सामीन हमने बात की गुलजार की नज़मों में औरत का तसव्वुर, साथ ही साथ हमने मौसीकी का नजराना सुना, और कलाम शायर में हमने सुना जनाब बलजीत सिंह साहब का खूबसूरत कलाम। उम्मीद है आपको आज का गुलिस्तान पसंद आया होगा। इसी ख्वाहिश के साथ दीजिए इजाजत मुझे यानी रहमान शेख को, आने वाले हफ्ते फिर से आपसे किसी मौजू पर बात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हमारे इस प्रोग्राम के रूह में हुआ है राजेंद्र सिंह दारा। खुदा हाफिज, शब खैर।

मीडियम 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कलाकार शौकत हुसैन खान का उपशास्त्रीय गायन ख्याल पूरिया कल्याण।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी श्रोताओं ने सुना। कलाकार शौकत हुसैन खान का उप शास्त्रीय गायन ख्याल पूरिया कल्याण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज है, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय

0: साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आईटीटी में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरनाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिन्हा को और तन्वी ने सुपनेडा काटेथोम को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
2: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटल के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज है, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया। 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम में 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
1: In order to strengthen country's energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National